0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 FM.
1: आई लव इट.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां. तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप.
6: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are staying. We are... Fazan 97.1 FM.
12: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
13: 97.1 FM.
10: You are listening 97.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 एफएम,
1: आई लव इट.
3: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले.
4: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ.
5: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं. खैर तो है,
4: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी.
5: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया.
4: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी.
5: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है.
4: AMH सॉलिसिटर्स. होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे. सोने ते सुहागा ये कि हर तरह का वीजा एक्सटेंशन, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने.
5: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा.
4: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम.
5: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए. नंबर क्या है?
4: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677. प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने. मुफ्ता मशवरा लो जी.
6: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: Planning a wedding, reception, or special celebration? Discover Excelsior Nawab, Nottingham's brand new renovated banqueting venue. A beautifully designed indoor marquee concept featuring sparkling traditional chandeliers, stunning LED lighting throughout, and elegant decor.
2: Enjoy venue hire, tables and chairs with table linen, chair covers, centerpieces, stage and walkway decor, a delicious three-course meal, drinks, professional waiter service, and a dedicated supervisor on the day.
1: Fully air-conditioned, with modern kitchen facilities, a spacious foyer reception area, located just 1 mile from Nottingham City Centre at 5 to 7 Lourdes Road, NG51EL.
2: Excelsior Nawab. Where your special moments become unforgettable.
3: This is a public service announcement.
4: Everybody. The station.
5: That plays
6: foot tapping music.
7: Hazar 97.1 FM.
8: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंगम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: जबरदस्त हिट्स,
7: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर।
8: फजान 97.1 FM,
9: आई लव इट।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। राया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी रابطہ करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2.
8: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
1: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
2: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
1: सलासा ट्यूशन सेंटर?
2: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
1: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
2: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
1: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
3: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
4: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
5: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are staying. We are playing
12: Fazan 97.1 FM.
13: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
14: 97.1 FM।
15: This is a public service announcement.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
2: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशन, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं।

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: Planning a wedding, reception, or special celebration? Discover Excelsior Nawab, Nottingham's brand new renovated banqueting venue. A beautifully designed indoor marquee concept featuring sparkling traditional chandeliers, stunning LED lighting throughout, and elegant decor.
2: Enjoy venue hire, tables and chairs with table linen, chair covers, centerpieces, stage and walkway decor, a delicious three-course meal, drinks, professional waiter service, and a dedicated supervisor on the day.
1: Fully air-conditioned, with modern kitchen facilities, a spacious foyer reception area, located just 1 mile from Nottingham City Centre at 5-7 Lourdes Road, NG51EL.
2: Excelsior Nawab. Where your special moments become unforgettable.
3: This is a public service announcement.
4: Everybody. The station.
5: That plays
6: foot tapping music.
7: Hazar 97.1 FM.
8: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 FM.
1: आई लव इट.

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करे।
6: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
7: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
8: हजार 97.1 FM।
9: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप।
10: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station
2: that plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07595150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।

0: गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-210732।
2: हरियाणा सुपरमार्केट 126132 ग्रैसिंगटन रोड NG8 3P Nottingham Monday to Saturday 8 AM to 8 PM Sunday 10 AM to 8 PM Ariana Supermarket Freshness you can trust Prices you'll love
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
4: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2
5: You are listening 97.1 FM।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzza 97.1 FM.
5: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
6: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
7: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
6: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
7: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
6: अरे वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
7: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
6: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
8: फ्रॉम 12:30 PM to 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
6: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
9: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM.
10: Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
11: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
12: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
11: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
12: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
11: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज

0: Provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level maths, physics, chemistry and biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
1: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं
2: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
1: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
2: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
1: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
2: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
1: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
2: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
1: टेस्ट भी वाइब भी।
3: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays.
3: Foot tapping music.
4: ठहरिए जरा ये कमर्शियल तो सुन ले.
5: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
6: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
7: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
6: सलासा ट्यूशन सेंटर?
7: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
6: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
7: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
6: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
8: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए। सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
9: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling,

0: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
1: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

Assalamualaikum, Namaste, and Sat Sri Akal to all my lovely and fabulous listeners who are listening me right now. जी हाँ लिसनर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं रेडियो फजा 97.1 FM. जी तो लिसनर्स, लेकर आई हूँ आप सभी के लिए आपका फेवरेट शो द टीवा डायलॉग विद रेडियो फजा 97.1 FM. तो लिसनर्स, रेडियो फजा 97.1 FM जहां मिलती है आपको इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट. तो लिसनर्स, इस इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट के पैटर्न को लेकर चलेंगे हम और आप एक साथ अब से लेकर ठीक दो घंटे तक. यानी अब से लेकर ठीक दो घंटे तक हम और आप रहेंगे साथ साथ, होगा आपका और मेरा कॉम्बिनेशन, और मिलकर बनाएंगे आपके आज के इस दिन को, इस सुबह को और इस लम्हे को और भी ज्यादा खूबसूरत, और भी ज्यादा हंसी, और भी ज्यादा यादगार. तो लिसनर्स, इंतजार किस बात का है, अभी उठाइए फोन 01157100971. ये है हमारे स्टूडियो का लाइव नंबर, सो आप जल्दी से जाइए और जल्दी से इस नंबर को सेव कर लीजिए ताकि आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें. और आपने करना क्या है, करना बस सिंपल सा है कि आपने इस नंबर को सेव कर लेना है और हमें जाकर अपने नाम के साथ कोई भी प्यारा सा पैगाम या जो कुछ भी आप चाहते हैं हमसे शेयर करना, और आप चाहते हैं कि हम शेयर करें बाकी के तमाम तर लिसनर्स से, तो आप वो हमें लिखकर भेज सकते हैं. तो जी लिसनर्स, हमें बताइए आपके आज के दिन की क्या प्लान्स हैं, क्या गोल्स हैं, क्या करने वाले हैं और क्या करने के इरादे हैं. वो सभी चीज़ें मैं जानना चाहती हूँ ताकि मैं भी रहूँ आपसे उसी तरह कनेक्टेड और उसी तरह बाहबर. इसके साथ साथ लिसनर्स, आप हमें radiofaza.com.uk जो कि है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, इस वेबसाइट के थ्रू आप हमें सुन सकते हैं, हमें ट्यून कर सकते हैं और हमारी लाइव अपडेट्स हासिल कर सकते हैं. और अगर आप चाहें तो आप हमारी एप्लीकेशन रेडियो फजा 97.1 FM को इजीली अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं. सो उसका तरीका मैं आप सभी से शेयर करती हूँ क्योंकि तरीका बहुत सिंपल सा है, तरीका बहुत आसान है. आपने क्या करना है, सिंपली अपने फ़ोन के एप्पल स्टोर या फिर गूगल स्टोर पर जाना है. वहां जाकर आपने सर्च करना है रेडियो फजा 97.1 FM, एंड विद इन अ फ्यू सेकंड्स एक पर्पल कलर का स्क्रीन आइकन आप सभी की स्क्रीन पर शो हो जाएगा. जी हाँ, यही है हमारी एप्लीकेशन. सो जाइए, इंतजार किस बात का है, जल्दी से जाकर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें और आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें. और अगर आप चाहते हैं कि आपका सफर भी हो यादगार, सफर हो खूबसूरत और आप अपनी मंजिल तक खूबसूरत ट्यून के साथ चलें और पहुंचें, तो उसके लिए फजा टैब के थ्रू आप हमें ट्यून कर सकते हैं. ये थे वो सभी तरीके जिनसे आप हमसे और हम आपसे जुड़ सकते हैं. तो लिसनर्स, अपने होने का एहसास हमें दिलाते रहिए और हमें बताते रहिए कि आप हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि हमेशा से मैं यही कहती हूँ कि कनेक्शंस हो या हो रिलेशनशिप्स या हो फ्रेंडशिप्स, हमेशा कोई भी बॉन्ड है वो टू साइडेड होता है. और अगर आप मुझे बताएंगे और मैं भी आपको बताऊंगी, तभी तो हम मिलजुल कर एक दूसरे की ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएंगे, आसान बनाएंगे. तो जी लिसनर्स, हमेशा की तरह आज के दिन का भी हमारा पर्पस, हमारा मकसद है आपके इस दिन को, इस सुबह को खूबसूरत बनाना, कुछ अच्छी यादें बनाना और कुछ मोटिवेटिंग बातें करना. सबसे पहले बताइए कैसे हैं आप सब. उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे. और कैसा रहा आपका वीकेंड? आई नो जब हम पूरा वीक एक हेक्टिक रूटीन से गुजरते हैं, थ्रू आउट द होल वीक हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, इतनी टफ रूटीन होती है, एक ही तरह का पैटर्न होता है, उससे फॉलो करना पड़ता है. तो जब आते हैं वीकेंड्स तो इंसान थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है, साथ ही साथ इंसान को थोड़ी सी फ्री विल मिल जाती है.
आई नो छुट्टी तो फिर छुट्टी होती है, चाहे वो एक ही दिन की क्यों ना हो, लेकिन जब आप होल वीक बहुत सारा काम करते हैं और आपको बीच में एक अच्छा, एक छोटा, एक प्यारा सा ब्रेक मिलता है, सो आपको बहुत अच्छा लगता है, माइंड बहुत फ्रेश फील करता है और इंसान सोचता है कि फाइनली द टाइम हैज़ अराइव्ड, जिस पे इंसान खुद को टाइम दे सकता है, अपने घर वालों को टाइम दे सकता है और फैमिली के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आजकल लाइफ इतनी फास्ट हो चुकी है, इट्स 2026 और स्टिल अब हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं क्योंकि ज़िंदगी तो इस तरह से नहीं चलने वाली। तो इन्हीं कामकाज के बीच में, डेली एक्टिविटीज़ के बीच में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि हम अपनी फैमिली के साथ बैठें, उनके साथ बातचीत करें। समटाइम्स क्या होता है कि हमारे अपनों को, हमारे चाहने वालों को और हमारे फैमिली मेम्बर्स को पैसों की ज़रूरत नहीं होती, फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरत होती है तो हमारे प्यार की, एहसास की और चंद मिनट्स की जो हम उनके साथ स्पेंड करें और उनसे उनके दिल का हाल जानें। तो डियर लिसनर्स, वीकेंड ही वो टाइम होता है जहाँ हमें ये मौका मिलता है और मैं चाहती हूँ कि हमें चाहिए कि हम अपने वीकेंड्स को बाहर जाने के बजाय अपने फैमिलीज के साथ स्पेंड करें, क्योंकि फिर होल वीक वही रूटीन फॉलो करनी होती है, वही सब काम करने होते हैं। बहरहाल लिसनर्स, अब वीकेंड तो जा चुका है, क्योंकि वीकेंड गुजर चुका है तो अब हम भी आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आज मंडे है, मंडे मीन्स न्यू वीक, न्यू गोल्स एंड न्यू एम्बिशंस। सो जी, आज के दिन का हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए? हमारा आज के दिन मेन मोटिव ये होना चाहिए कि हमें करनी है प्लानिंग कि किस तरह से हम इस वीक को गुजारेंगे, ना सिर्फ गुजारेंगे बल्कि अच्छा बनाएंगे। तो जी लिसनर्स, इंतज़ार किस बात का है? अगर आप अभी घर में मौजूद हैं, अपने ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, या फिर अगर आप ऑफिस के लिए निकल चुके हैं और रास्ते में हैं, अपनी डेस्टिनेशन की तरफ रवा दवा हैं, या फिर आप अपने ऑफिस के डेस्क पर बैठे सोच रहे हैं कि कहां से कामों को स्टार्ट किया जाए, सो इट्स अ मोमेंट, इट्स अ टाइम जहां से आपको स्टार्ट लेना है। और अगर आप घर में हैं अभी, और वो तमाम तर फीमेल्स जो इस वक्त घरों में मौजूद हैं, और वो तमाम तर फीमेल्स जो कि अपनी वर्किंग लाइफ की तरफ बढ़ रही हैं, और वो सभी स्टूडेंट्स जो इस वक्त स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, सबसे पहले मैं इतना कहूँगी कि दिन का स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, यू नीड टू हैव अ गुड ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट अ न्यू डे, स्पेशली वेन यू स्टार्ट अ न्यू डे इन अ न्यू वीक। सो कोशिश करें, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन अच्छा बने, खूबसूरत बने और आप थ्रू द होल डे मोटिवेट रहें, सो स्टार्ट लें एक अच्छे ब्रेकफास्ट से, क्योंकि एक गुड मील हमेशा से हमारे दिन को, हमारे मूड को, हर एक चीज़ को इन्हेंस कर देता है। तो जी, अभी भी वक्त है, उठाइए खूबसूरत सा चाय का मग, बेलकनी के किसी कोने में खड़े होकर नेचर को ऑब्जर्व करिए और साथ ही साथ रेडियो फजा 97.1 एफएम की खूबसूरत आवाज़ों को सुनिए। जी तो लिसनर्स, होंगी बहुत सारी गपशप क्योंकि आपका और मेरा साथ अब रहने वाला है ठीक दो घंटे तक, यानी अब से लेकर ठीक दो घंटे तक हम और आप रहेंगे साथ साथ। काफ़ी सारी गपशप होगी, कुछ आपकी सुनी जाएंगी, कुछ अपनी सुनाई जाएंगी, लेकिन काफ़ी गपशप तो हो रही है, अभी थोड़ा सा म्यूजिक मस्ती का टाइम होता चलता है क्योंकि आपके इस वीक को, इस दिन को खूबसूरत बनाना है। सो कहा जाता है कि म्यूजिक रूह की गजा होती है, सो मौसीकी बहुत ज़रूरी होती है आपकी सोल को इन्हेंस करने के लिए, फ्रेश करने के लिए और एनर्जेटिक करने के लिए। सो जी, सुनते हैं ये खूबसूरत सा साउंड ट्रैक, इस साउंड ट्रैक के उस पार होती है आपसे मुलाकात और फिर यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।

पता नहीं क्यों अंजाम जानते हुए भी मैं हर बार आकाश से मिलने पहुंच जाती हूँ, शायद दिल के हाथों मजबूर होके। एक महीने पहले इसी रेस्टोरेंट में मेरी आकाश से मुलाकात हुई थी। यकीन नहीं होता इतने से वक्त में वो मेरे इतने करीब आ गया है।

0: जी तो लिसनर्स, अभी हमारे शो में वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। सो जो लिसनर्स, चलते हैं बढ़ते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानेब। आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।
1: इट्स कमर्शियल टाइम।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, यहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioche straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
10: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
11: You are listening 97.1 FM.
12: You are staying. We are playing.
0: Fazan 97.1 FM.
13: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
14: 97.1 FM

जी हाँ, वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त ज़ैनब फातिमा, और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो द डीवा डायलॉग विद रेडियो फजा 97.1 FM। जी तो लिसनर्स, आई होप सो कि आप सभी ने इस खूबसूरत से साउंड ट्रैक को एंजॉय किया होगा। और वैसे भी कहा जाता है कि म्यूज़िक जो है वो रूह की ग़िज़ा होती है, सो अक्सर औकात म्यूज़िक को लोग थेरेपी के तौर पर भी यूज़ करते हैं। मैं दूसरों की क्या बात करूँ, मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वेन एवर आई एम डूइंग समथिंग स्ट्रेसफुल, समथिंग ऐसा जो कि बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन क्रिएट कर रहा हो मेरे माइंड में, सो मैं क्या करती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और मैं उस टाइम में अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए हमेशा म्यूज़िक सुनती हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि म्यूज़िक को हम एज अ थेरेपी लेते हैं, सो डिफरेंट मूड के साथ साथ हमारे म्यूज़िक चॉइसेस और प्रेफरेंसेस भी डिफरेंट होती जाती हैं। सो तो लिसनर्स, जी तो लिसनर्स, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई फेवरेट साउंड ट्रैक हम अपने शो में शामिल करें, सो आप हमें बता सकते हैं। सिंपली आपने जाना है 01157100971 पर, और वहां जाकर हमें आपने जस्ट टेक्स्ट कर देना है कि आपका ये फेवरेट साउंड ट्रैक है, हम ज़रूर उस साउंड ट्रैक को अपने शो में शामिल करेंगे। जी तो लिसनर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे हर शो का स्टार्टअप, हर शो का एक परंपरा है कि हम अपने हर शो का स्टार्ट करते हैं एक खूबसूरत, एक मोटिवेशनल और एक प्यारी सी बात से, ताकि आपका जो पूरा दिन है ना वो उस मोटिवेटिंग बात की वजह से पॉजिटिव हो जाए, अच्छा हो जाए। और जो सब आपके माइंड में नेगेटिविटी आ रही है, नेगेटिव थॉट्स तो फिर हर एक इंसान के साथ साथ चलते रहते हैं, वो सब भी साइड पर हो जाए। तो इसी तरह से आज के दिन के हवाले से, जैसा कि आज है स्टार्ट ऑफ द वीक, सो स्टार्ट ऑफ द वीक के हवाले से मेरे माइंड में एक खूबसूरत सा कोट है, आप सभी से शेयर करती हूँ, होप सो आप सभी को भी अच्छा लगेगा। सो बेसिकली हमारा आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो कुछ यूं है, हमारा आज का मोटिवेशनल कोट ये कहता है कि डू नॉट लुक बैक एट द डोर्स दैट हैव क्लोज्ड, लुक अहेड एट द स्काई बिकॉज योर विंग्स आर मेंट टू फ्लाई नॉट टू बी केज्ड इन द पास्ट। सो बेसिकली ये जो खूबसूरत सा कोट है ये अमेरिकन ऑथर और मोटिवेशनल स्पीकर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल एंड हेलन केलर के मशहूर फिलोसफी के कॉन्सेप्ट से लिया गया है। तो बेसिकली इन दोनों ही खूबसूरत से ऑथर्स ने इस बात को अपने अपने टाइम पीरियड में डिफरेंट तरह से कोट किया था, जिसे मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। सो बेसिकली अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का ये कहना था कि व्हेन वन डोर क्लोजेस अनदर ओपन्स, बट वी ऑफन लुक सो लॉन्ग एंड सो रिग्रेटफुली अपॉन द क्लोज डोर्स दैट वी डू नॉट सी द वन विच हैज ओपन फॉर अस। उनका कहना ये था कि जैसे ही इंसान की ज़िंदगी में एक दरवाज़ा बंद होता है तो उसी टाइम पीरियड में उसी साथ ही एक और दरवाज़ा खुल जाता है, लेकिन हम इंसान क्या करते हैं कि हम इंसान इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं और अपनी ज़िंदगी से इतना मायूस हो जाते हैं कि हम उस डोर को, उस दरवाज़े को देखते ही नहीं हैं जो हमारे लिए ओपन हुआ है, बल्कि हमारा सारा फोकस, हमारी सारी त्वचा उस जगह पर होती है जो हमारे लिए क्लोज हो चुकी। ऐसा कभी भी नहीं होता कि अगर आपका एक पाथ बंद हो जाए या आपने कुछ प्लान किया है, आपने ज़िंदगी में कुछ करने का सोचा है और वो चीज़ नहीं हो रही, सो कोई और रास्ता ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। बाज़ुकात इंसान जैसा सोचता है वैसा होता नहीं है, और जो होता है वही इंसान के लिए बेस्ट होता है।

वेल लिसनर्स, हम बात कर रहे थे डोर्स की कि किस तरह से इंसान की ज़िंदगी में जब एक पन्ना बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। अच्छा, अब इस बात को डिफरेंट दौर के फिलोसोफर्स ने, डिफरेंट दौर के ऑथर्स ने अपने अपने मुताबिक कोट किया है। अगर हम इसी में देखें तो हज़रत मौलाना रूमी ने माजी की दुकान को छोड़ने और आगे बढ़ने के हवाले से क्या चीज़ फरमाई है। सो उनका कहना है, डोंट ग्रीव, एनीथिंग यू लूज कम्स अराउंड इन अनदर फॉर्म। सो इंसान को हमेशा क्या करना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि लंबी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। हाँ, इट्स ट्रू कि आप किसी ऐसी चीज़ की उम्मीद ना रखें तो आपको लगे कि टोटली मुश्किल है, नहीं होगा। लेकिन मेरा मानना यही है कि आपको हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। समटाइम्स सम हाउ सिचुएशंस तो फिर ऊपर नीचे हो ही जाती हैं, लेकिन अगर आपके मुताबिक कुछ नहीं हो रहा तो दिल क्यों छोटा करते हो। आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ तो परसों तो होगा। एक ना एक दिन इंसान की ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर आता है कि जब इंसान को रियलाइज़ होता है कि वाकई अगर उस टाइम पर ये चीज़ हो जाती तो उसके क्या सरकमस्टांसेस होते। अगर मैं पर्सनली आपको अपनी ज़िंदगी के मुताबिक एक लाइव एक्सपीरियंस बताऊं, तो समहाउ मेरा ना जो इंटरेस्ट था शुरू से वो हमेशा आईटी में था। मुझे लगता था कि मैं आईटी में बहुत अच्छी हूँ, मुझे कोडिंग की फील्ड में जाना चाहिए, इट्स परफेक्ट फॉर मी। और समहाउ फॉर सम रीजंस मेरा आईटी में एडमिशन नहीं हुआ था एट दैट टाइम। तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई, ना सिर्फ डिसअपॉइंट हुई बल्कि मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो गई। और मैंने ये भी सोचा कि क्या फ़ायदा, कि मैं तो आईटी में जाना चाहती थी बट मुझे चांस नहीं मिल रहा, ये क्या। मेरा ड्रीम था कि मैं आईटी में कुछ कर सकूँ, कुछ करके दिखाऊँ, आगे बढ़ूँ। तो ये सब इस तरह की ना सारी चीज़ें मेरे माइंड में उस टाइम पर आ रही थी। सो देन जब मेरा एडमिशन हुआ इस फील्ड में जिसमें मैं अब करेंटली पढ़ रही हूँ, तो मेरे बस माइंड में यही था कि आई विश आईटी में हो जाता, काश कि मैं आईटी की जानिब जाती। लेकिन चूंकि मैं नहीं जा सकी थी, मैं इस फील्ड में आ गई थी, पर वो वक्त तो गुजर गया। लेकिन आज जब मैं घर में बैठकर अक्सर औकात फ्री टाइम इंसान के पास होता है ना, कि जब इंसान के पास इतना ज़्यादा फ्री टाइम होता है कि वो बैठ के सोचे किसी चीज़ के बारे में, तो अब जब मैं अक्सर सोचती हूँ तो मैं ये बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि थैंक गॉड कि मेरा आईटी में नहीं हुआ और जिस फील्ड में मैं अब हूँ करंटली ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, बिल्कुल मेरे मुताबिक है और मुझे यहाँ बहुत मज़ा आता है और हर एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है। सो मुझे इस चीज़ से अंदाज़ा हुआ कि इंसान के लिए जो कुछ होता है उसमें इंसान की बेहतरी होती है। बस वो बात है ना कि इंसान को वक्ती तौर पर समझ नहीं आता, लेकिन थोड़े टाइम के बाद इंसान को समझ आ जाता है। सो जी लिसनर्स, ये था हमारा आज का मोटिवेशनल कोट। होप सो आपको अच्छा लगा होगा और आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई तब्दीली तो लेकर आएगा। अच्छा तो लिसनर्स, अगर आपके भी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ आप कुछ और चाहते थे और आपको कुछ और मिल गया, सो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। किस तरह से शेयर करना है, सिंपली 01157100971 इस नंबर पर जाना है। वहाँ जाकर आपने मुझे ज़रूर बताना है कि सम हाउ आपकी लाइफ में ऐसी क्या सिचुएशंस आई कि जहाँ आपको अपने डिसीजंस को चेंज करना पड़ा, और क्या आप अब सेटिस्फाई फील करते हैं या फिर नहीं। सो ज़रूर बताइएगा। होप सो मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। चलिए तो लिसनर्स, मोटिवेशनल बातों के बाद काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है हमें अपनी सोल को, अपने माइंड को फ्रेश करने की। तो चलते हैं, सुनते हैं ये साउंड ट्रैक, और साउंड ट्रैक से वापसी पर ज़रा किचन की जानिब रुख करते हैं, क्योंकि आई नो ऑल द डीवाज एक्साइटेड होंगी, इंतज़ार कर रही होंगी कि आज किचन में क्या पकने जा रहा है। सो स्टे ट्यून विद अस और सुनते हैं ये खूबसूरत सा साउंड ट्रैक।

जी तो वेलकम बैक वंस अगेन। उम्मीद करती हूँ आप सभी ने इस साउंड ट्रैक को एंजॉय किया होगा। जी तो लिसनर्स, जैसा कि हमने काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल बातें तो कर ली हैं, अब वक्त हुआ है हमारे शो में किचन की जानिब बढ़ने का, क्योंकि ऑल द लवली डिवास इंतज़ार कर रही होंगी इस चीज़ का कि आज हम किचन में क्या बनाएंगे। सो जैसा कि जून का मंथ चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी अब अपने पीक पर होती जा रही है, और जैसे जैसे कि गर्मी ज़्यादा होती जाती है सो हमारा दिल करता है कि कुछ ऐसा हो जो लाइट वेट हो, यानी कि बिल्कुल भी हैवी ना हो। जैसा कि रिसेंटली ईद उल अज़हा भी गुजरी तो हमने काफ़ी ज़्यादा मीट, चिकन और इस तरह की चीज़ें तो बहुत खाई हैं, और इन सभी चीज़ों की खाने की वजह से इंसान सोचता है ना कि बहुत हैवी हैवी सा हो गया है। सो आज लाई हूँ मैं अपनी तमाम तर टीवास के लिए ऐसी रेसिपीज जो बहुत सिंपल हैं प्लस मौसम के अकॉर्डिंग है। सो जी, अगर आप सभी ने क्लीनिंग कंप्लीट कर ली है और आप ये सोच रही हैं कि क्या बनाया जाए तो आपकी समस्या होने वाली है दूर, क्योंकि आज मैं लाई हूँ आप सबके लिए मज़ेदार से स्पाइस किचन में

सी द लिसनर्स, आज लाई हूँ आप सभी के लिए शाही दही लौकी, यानी कि आज हम बनाएंगे टोटली वेजिटेरियन रेसिपीज उन सभी लिसनर्स के लिए जो खा के मीट थक चुके हैं, या फिर हमारे वो तमाम तर लिसनर्स जो हैं वेजिटेरियन। सो आज आपके ये है बेस्ट डे, क्योंकि आज की सभी रेसिपीज हैं टोटली वेजिटेबल रिलेटेड। सो हमारी आज की फर्स्ट रेसिपी है शाही दही लौकी। सो इंग्रेडिएंट्स आप सबसे शेयर करती हूँ, जल्दी से आप अपनी डायरी उठा लीजिए ताकि माय लवली डिवास कुछ भी मिस आउट ना हो। सो इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले हमें चाहिए लौकी यानी कि कद्दू 500 ग्राम्स, आपने इनको अच्छी तरह से गोल क्यूब्स में कट करके रख लेना है। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है दही यानी योगर्ट, आपने योगर्ट को एक कप ले लेना है, या चाहें तो आप एक से दो चम्मच भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू, बट आई थिंक कि क्वांटिटी अगर आप मेरे हिसाब से बना रहे हैं सो ये 3 to 4 सर्विंग्स के लिए बेस्ट है, तो आपको एक कप योगर्ट लेना चाहिए। अच्छा, इस रेसिपी के लिए हमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो चाहिए वो है प्याज, आपने एक बारीक साइज में बिल्कुल कट करके रख लेना है। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, हरी मिर्चें आपने ले लेनी है 2 अदद, और अब बारी आती है हमारे स्पाइसेस की यानी के मेन इंग्रेडिएंट की। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि खाने का मेन इंग्रेडिएंट होता है उसकी सब्जी या फिर उसका मीट, बट फॉर मी खाने के मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं स्पाइसेस, क्योंकि आप सबने नोट किया है कि बिना स्पाइसेस के खाने का कोई स्वाद नहीं होता और खाना बहुत फीका फीका लगता है। सो अगर हम चाहते हैं कि हमारा खाना हो डिलिशियस और हो उसमें थोड़ी सी जान, तो आपको स्पाइसेस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, इस रेसिपी में हम शामिल करेंगे हल्दी 1.5 टेबलस्पून, जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून। और नमक हसबे जरूरत हसबे जायका, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा इंग्रेडिएंट है कुकिंग ऑयल। सो लिसनर्स, ये थी इंग्रेडिएंट लिस्ट जो कि मैंने आप सभी से शेयर कर दी, सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। आई नो ये तो वो सब चीज़ें हैं कि जो हर घर में मौजूद होती है, लेकिन हो सकता है लौकी आपके घर में ना हो, सो ये आपको कहीं से भी इजीली सुपरमार्केट से मिल जाएगी। बेसिकली लौकी एक बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और रिफ्रेशिंग सब्जी है, कहा जाता है कि एज अ वेजिटेबल लौकी बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जिस तरह का मौसम चल रहा है इतनी गर्मी हो गई है, सो हमें कुछ फ्रेश फ्रेश खाने की ज़रूरत है। सो हमें वेजेस भी वही खानी चाहिए जो बहुत फ्रेश हो, ठंडी हो, ताकि अच्छा फील हो। सो ये रेसिपी बेस्ट है उन सभी लिसनर्स के लिए जो कि चाहते हैं कुछ फ्रेश कुछ रिफ्रेशिंग खाना। चलिए लिसनर्स, आई थिंक सो अब तक तो इंग्रेडिएंट्स आपने नोट कर लिए होंगे, अब ज़रा रेसिपी की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह से बनानी है हमने ये रेसिपी। सो सबसे पहले आपने एक पैन ले लेना है, उसमें कुकिंग ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद आपने इसमें शामिल करना है प्याज। अब आपने प्याज को तब तक के लिए पकाना है कि जब तक प्याज का रंग हल्का सा गुलाबी हो जाए, बिल्कुल भी डार्क ना हो, क्योंकि जो भी आप रेसिपी ट्राई कर रहे हों द मेन जो गलती आप सभी करते हैं वो ये होती है कि आप अपने प्याज को बहुत ज़्यादा कुक कर देते हैं। इससे ये होता है कि प्याज का कलर डार्क हो जाता है, और जब प्याज का कलर डार्क होता है तो ओवरऑल रेसिपी का ही कलर डार्क हो जाता है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेसिपी दिखने में खूबसूरत टेम्पटिंग डिलिशियस दिखे, सो आपको क्या चीज़ करने की ज़रूरत है कि आपने बिल्कुल प्याज को हल्का सा सुनहरा करना है। अच्छा, जैसे ही आपका प्याज बिल्कुल हल्का सुनहरा हो जाए, आपने इसमें शामिल कर देना है जिंजर गार्लिक पेस्ट और फिर हरी मिर्चें। अच्छा, इन दोनों ही को शामिल करने के बाद आपने 1 मिनट के लिए अच्छे से इसे भून लेना है। अब आपने इसमें कटी हुई लौकी, हल्दी, लाल मिर्च, नमक और दाल, इन सभी इंग्रेडिएंट्स को डालकर अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेना है।
आधा कप पानी आपने इसके अंदर तब शामिल करना है जब आपकी लौकी बिल्कुल नरम हो जाए। सो सबसे पहले आपने सब इंग्रेडिएंट्स को ऐड करके अच्छे से भूनना है, और जब आपको लगे कि थोड़ा सॉफ्ट हो रही है कद्दू तो आपने थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। अच्छा तो लिसनर्स, जैसे ही आपको लगे कि अब आपका जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है और जो लौकी है वो भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, सो समझ जाएं कि अब आपकी रेसिपी कंप्लीटिंग मराहिल के करीब करीब है। सो अब आपने आंच बिल्कुल धीमी कर देनी है। आंच को आपने करना है बिल्कुल धीमा, और साथ ही आपने शामिल कर देना है योगर्ट और जीरा पाउडर। अब आप अच्छी तरह से चम्मच चलाते रहें जब तक कि जो आपका दही है उसके अंदर भी तो ऑब्वियसली पानी होता है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और ऑयल और वाटर अलग अलग से दिखने लगे। आखिर में कसूरी मेथी और हरा धनिया इसके ऊपर से आपने छिड़क देना है, और टडा, आपकी रेसिपी हो गई तैयार। बस अब किस चीज़ की देरी है, अब चाहें तो आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं, लंच में खा सकते हैं और डिनर में भी। सो सिंपल से यह रेसिपी थी, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, जस्ट बेसिक से मसाला जात थे जो कि हम सभी के घरों में मौजूद होते हैं। सो होप सो आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो कि ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आज मंडे है, और मंडे जैसा कि हम एक न्यू स्टार्टअप लेते हैं, न्यू वीक का, न्यू गोल्स का, न्यू एम्बिशंस का, सो आप भी एक न्यू स्टार्टअप लें हेल्दी खाने का, रिफ्रेशिंग खाने का।

0: सो तो लिसनर चलिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आज की जो हमारी सेकंड रेसिपी है वो भी है इसी तरह बहुत मज़ेदार, बहुत डिलीशियस एंड आई थिंक बहुत सारे लोगों को भिंडी बहुत पसंद होती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है तमाम तर वेजीज में, और जब भी भिंडी बने तो मैं बहुत शौक से खाती हूँ। आई नो आप सभी को भी पसंद होगी। तो आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन अभी वक्त हुआ है शो में एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। सो लिसनर्स चलते हैं बैठते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानेब। आप सभी से मुलाकात होगी ब्रेक के उस पार। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो फजा 97.1 FM।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: ओए खुशियाँ मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है?
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7, 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

जी हाँ, वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ैनब फातिमा। आप सभी को वेलकम करती हूँ आपकी फेवरेट शो सीरियल लिसनर्स। आप सभी को वेलकम करती हूँ आपके फेवरेट शो द टीवा डायलॉग विद रेडियो फजा 97.1 FM। जैसा कि ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे खानों के साथ साथ मज़ेदार वेजीज की, और मैं आपको बता रही थी कि किस तरह से भिंडी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड आई नो हम जितने भी एशियन लोग हैं, देसी लोग हैं, हम सभी को भिंडी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि समझा जाता है कि जितनी भी वेजीज हैं उन सभी वेजीज पे भिंडी इज़ द बेस्ट। मैं बाकी तमाम तरह वेजिटेबल्स खाने में हमेशा नखरे करती हूँ, लेकिन जहाँ बात होती है भिंडी की वहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, क्योंकि भिंडी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होती है। तो मैंने सोचा कि जहाँ आज हम अपनी वेजिटेरियन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहीं आज मैं बनाने जा रही हूँ चटपटी अचारी भिंडी। सो होप्स हो के लिसनर्स को ये बहुत अच्छी लगेगी। सो इंग्रेडिएंट्स आप सभी से शेयर करती हूँ। सिंपली इसके लिए हमें चाहिए भिंडी 500 ग्राम्स, जिसे हमने अच्छी तरह से धोकर कट करके रख लेना है। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी के लिए अनियंस। अब हमने प्याज ले लेने हैं 2 अदद, जिन्हें हमने अच्छी तरह से बारीक कट करके रख लेना है। जी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है जी टमाटोज, जो कि सेम 2 अदद हमने ले लेने हैं। और इसका जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है इस रेसिपी की जान, यानी कि यह इंग्रेडिएंट हमारी रेसिपी को बनाएगा बहुत ज़्यादा मज़ेदार। सो ये है जी अचारी मसाला। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सा मसाला है, कोई न्यू मसाला है मार्केट में आया, या फिर सुपरमार्केट से कुछ खरीद कर लाना पड़ेगा। सो ट्रस्ट में लिसनर्स, आपको कुछ भी बाय नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल से घरों में पड़े हुए मसालेजात से हम बनाएंगे ये अचारी मसाला। सो सिंपली आपने क्या चीज़ ले लेनी है, सौंफ ले लेने हैं, थोड़े से कलौंजी, उसके बाद साबित धनिया, और इन सब को आपने अच्छी तरह से पीस कर 1.5 टेबल स्पून एक मसाला बना कर रख देना है। तो लिसनर्स, यही मसाला हमारी इस रेसिपी की जान है, और ये बनाएगा हमारी रेसिपी को बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस। सो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ड्राई मैंगो पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी 1.5 टेबल स्पून, लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, और नमक हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायका, और लास्टली हमें चाहिए कुकिंग ऑयल 4 टेबल स्पून। वैसे कहा जाता है कि जितना ज़्यादा कुकिंग ऑयल हम भिंडी में डालें उतनी ही ज़्यादा हमारी भिंडी अच्छी टेंडर और डिलीशियस बनती है। सो ये तो थे इंग्रेडिएंट जो कि सभी मैंने आपसे शेयर कर दिए। चलिए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं रेसिपी की जाने। सो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है कि आपने एक पैन ले लेना है। पैन में आपने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करके अच्छी तरह से उसके अंदर आपने भिंडी शामिल कर देनी है, और भिंडी को आपने 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल तेज़ आंच पर फ्राई करना है, ठीक है। अगर आप तेज़ आंच में फ्राई करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनेगी और बहुत ज़्यादा अच्छी दिखेगी, प्रेजेंटेबल। इनकेस अगर आप आंच स्लो कर देते हैं तो आपकी जो भिंडी है वो बहुत ज़्यादा ओवर कुक्ड हो जाएगी, और जो बहुत ही ज़्यादा सॉगी लगेगी और दिखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। सो कुकिंग

सीखते हुए आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि किस तरह से आप टाइम मैनेज करें, प्लस आप हीट को भी मैनेज करें ताकि आपकी जो रेसिपी है वो खाने में तो टेस्टी हो ही हो, दिखने में भी टेस्टी हो। क्योंकि अगर कोई चीज़ आपकी आंखों को खूबसूरत नहीं दिखेगी, प्रेजेंटेबल नहीं दिखेगी, तो आपका ट्रस्ट भी कभी भी दिल नहीं करेगा उसको खाने का। सो माय लवली डिवास, थोड़ा फोकस किया करें जब भी आप कुकिंग कर रही हों। अच्छा, जब 4 to 5 मिनट्स आपने अच्छी तरह से भिंडी को फ्राई कर लेना है, सो अब आपने क्या करना है, इसे निकाल कर साइड पर रख देना है। अब आपने उसी पैन के अंदर 2 टेबलस्पून एक्स्ट्रा कुकिंग ऑयल शामिल कर लेना है, जैसे कि पहले आपने 2 टेबलस्पून ऐड किया था, एंड देन अब आपने फिर से 2 टेबलस्पून ऐड करना है और उसके अंदर शामिल कर देना है प्याज। प्याज को तब तक पकाना है जब तक इसका कलर लाइट सा गोल्डन हो जाए और वो बिल्कुल भी डार्क ना दिखे। जैसे ही आपका प्याज जो है वो बिल्कुल गोल्डन हो जाए, तो अब बारी आ गई है हमारे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट के शामिल करने की। आपने शामिल कर देने हैं टमाटर, टमाटर के साथ साथ वही अचारी मसाला जिसे हमने खुद घर में देसी मसालों को यूज़ करके बनाया था, इन दोनों चीज़ों को, दोनों को शामिल करना है और 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेना है, ठीक है। अब इस मसाले में आपने फ्राई की हुई भिंडी जिसे आपने सबसे पहले फ्राई करके रखा था, इसे शामिल कर देना है। इसे शामिल करते ही आपने साथ में ऐड करने हैं बाकी के स्पाइसेस, जैसे कि हल्दी, लाल मिर्च, नमक और ड्राई मैंगो पाउडर। अब बस करना आपने ये है कि इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद 5 से 7 मिनट के लिए इसको अच्छे से तेज़ आंच पर पकाना है और टडा, हमारी रेसिपी हो गई तैयार। देखा आप सबने कितनी सिंपल सी थी, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बहुत ज़्यादा चटपटी होगी, बहुत ज़्यादा डिलिशियस होगी। सो लाजमी ट्राई करिएगा इस रेसिपी को, बल्कि आज ही ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये चटपटी सी भिंडी कैसी लगी। जी तो लिसनर्स, इसी के साथ ही मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया, मैंने सोचा कि क्यों ना अपने लिसनर से पूछा जाए, तो वो कौन सी ऐसी वेजी है, यानी कि कौन सी ऐसी वेजिटेबल है जो आप सभी के घरों में खाने में लोग नखरा करते हैं। होता ना समटाइम्स कि एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आप जब भी घर में ट्राई करो या बनाओ तो सब बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं। सो लाजमी मुझे बताइएगा कि आपको ऐसी वेजिटेबल कौन सी लगती है। 01157100971 है हमारे स्टूडियो का नंबर, सो जल्दी से जाइए और मुझे बताइए। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप सब लिसनर्स मुझे फीडबैक देते हैं और बताते हैं कि आपको मेरा शो कैसा लगा और समहाउ आप क्या चाहते हैं कि मैं अपने शो में क्या क्या चीज़ें ऐड करूँ। सो इसी तरह से फीडबैक देते रहिए करें, क्योंकि आपका फीडबैक मुझे मोटिवेट करता है, जिस तरह से मेरा मोटिवेशनल कोट बनाता है आपके दिन को खूबसूरत। तो लिसनर्स, आई थिंक काफ़ी चटपटा और काफ़ी स्पाइसेस की और मसाला जात की बातें तो हमने कर ली हैं, लेकिन इस तपती गर्मी में और हमारी डिवास के लिए एक फुल मील को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी है कि साथ ही साथ कुछ मीठा भी हो, क्योंकि जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम एशियन फैमिलीज में, स्पेशली जितनी भी हम एशियन कम्युनिटी हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो या फिर हो बांग्लादेश से, हम सभी को स्पाइसी खाने के बाद कुछ मीठा खाने की, कुछ स्वीट खाने की क्रेविंग लाजमी होती है। और ये मैं आपको अपना नहीं बता रही, मैं सभी का बता रही हूँ, ये हम सब के साथ होता है कि जब हम कुछ चटपटा, कुछ तीखा खाते हैं तो साथ ही माइंड में ये एक चीज़ आती है कि अच्छा चलो अब कुछ मीठा खाया जाए। तो जी इसी तरह से स्पाइस किचन में भी मैं लाई हूँ आपके लिए एक इसी तरह की स्वीट सी, डिलिशियस सी और यमी सी रेसिपी। तो रेसिपी की जानी बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक खूबसूरत सा ट्रैक। ट्रैक के उस पार होती है आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं द डीवा डायलॉग विद रेडियो फजा 97.1 FM।

से तो लिसनर्स, वेल वेल वेल, उम्मीद करते हैं कि ये खूबसूरत सा गाना आप सबको अच्छा लगा होगा। जैसा कि हम बात कर रहे थे माई लवली डिवास के, किस तरह से कुछ चटपटा खाने के बाद मीठा खाना इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली जब आप रहते हों एक एशियन फैमिली में, एक एशियन कम्युनिटी में। सो सभी घर वालों का यही दिल होता है कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। सो इसीलिए आज की हमारी थर्ड रेसिपी है द अरेबियन मिल्क पुडिंग। सो ये बहुत सिंपल सी है, थोड़ी सी यूनिक है, थोड़ी डिफरेंट फ्यूजन की है, बट ऑनेस्टली आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी। सो चलिए और सुनते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। सो सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको चाहिए मिल्क 3 कप्स, साथ ही साथ आपको चाहिए थोड़ी सी क्रीम भी, आप 1 कप यूज़ कर सकते हैं।

अच्छा, हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है कॉर्नफ्लावर, जिसे आपने ले लेना है 4 टेबलस्पून। साथ ही हमें चाहिए होगी चीनी 1 एंड 2 कप्स, फ्रेश क्रीम 1 एंड हाफ कप, साथ ही हमें चाहिए वनीला एसेंस 1 टेबलस्पून, जो कि हमारे इस रेसिपी को फ्लेवरफुल बनाएगा और इसके अंदर एक्स्ट्रा फ्लेवर्स को ऐड कर देगा। साथ ही साथ हमें चाहिए पिस्ता और बादाम 3 टेबलस्पून, जिन्हें हमने अच्छी तरह से बारीक क्रश करके रख लेना है। और हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी का 2 टेबलस्पून्स हनी। सो ये थे हमारे इंग्रेडिएंट सिंपल से। आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, ताकि वो तमाम डिवाइस जिनसे कुछ मिस हो गया है उसे नोट डाउन कर लें। सो सबसे पहले हमें चाहिए दूध 3 कप्स, कॉर्नफ्लावर 4 टेबलस्पून्स, शुगर 1 एंड हाफ कप, फ्रेश क्रीम 1 एंड हाफ कप, वनीला एसेंस, एंड देन पिस्ता एंड बादाम तो हमारी गार्निशिंग में काम आएंगे ना, एंड देन हनी। सो ये थे हमारे इंग्रेडिएंट्स। अब हम बनाते हैं इस मज़ेदार सी अरेबियन पुडिंग को। सो सबसे पहले आपने सॉस पैन के अंदर ठंडा दूध ऐड कर देना है, साथ ही साथ कॉर्नफ्लावर और शुगर, इन तीनों चीज़ों को ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ताकि जो कॉर्नफ्लावर है उसका जो बैटर है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और बिल्कुल भी लम्स ना बने। सेकेंडली अब आपने क्या करना है, इस पैन के अंदर आपने क्या चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। अब आपने इस पैन के अंदर अच्छे से चमचा चलाते रहना है, चमचा बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि जब आप इसको अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे तभी कॉर्नफ्लावर बिल्कुल स्मूथ बैटर बनेगा और जितने भी लम्स बन रहे हैं वो नहीं बनेंगे। सो जैसे ही आपको लगे कि आपका जो दूध है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है, और अब उसमें उबाल भी आ रहा है, जैसे ही आपने उसके अंदर आपने ऐड कर देना है अपने उस मिक्सचर को, अच्छी तरह से ऐड करने के बाद जब वो बिल्कुल गाढ़ा हो जाए, आंच को आपने बिल्कुल धीमा कर देना है, और धीमा करने के बाद आपने शामिल करना है वनीला एसेंस एंड देन फ्रेश क्रीम। इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को ऐड करके अच्छे से मिक्सअप करना है, इसे मज़ीद 1 मिनट के लिए अच्छी तरह पकाना है। और बस आपकी पुडिंग तैयार होगी। जस्ट सिंपल से फ्यू स्टेप्स को आपने फॉलो करना है, एंड देन ये रेसिपी हो गई तैयार। अब आप चाहें तो आप इसे इस तरह भी खा सकते हैं, लेकिन स्वीट का और मीठे का मज़ा तो हमेशा ठंडा करके खाने में होता है। सो आप इसको रूम टेम्परेचर पर आने दें और इसे फ्रीज़र पर रख दें, और खाने के बाद जब आप अपना चटपटा खाना मील इंजॉय कर चुके हैं, इसे निकालें, फैमिली के साथ शेयर करें, और गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर से बादाम, पिस्ता और हनी को ऐड कर दें। जी तो लिसनर्स, ये थी हमारी आज की स्पाइस किचन की फूड सीरीज रेसिपीज। होप सो आज मैंने उन तमाम तर लिसनर्स को टारगेट किया जो कि हैं हमारे बेचारे वेजिटेरियन और मीट और चिकन, इन तमाम तर चीज़ों को सुन सुन के ज़रा थक चुके हैं। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपीज अच्छी लगी होंगी, और मैं लवली डिवास जैस जो कि मीट की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि रोज़ वही हैक्टिक रूटीन और वही बोरिंग खाना, सो लाइफ में कुछ चेंज लाना चाहिए, तो आज हम चेंज लाए हैं इस तरह से रेसिपीज़ के थ्रू। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगी मुझे इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का। एक बार फिर से बता देती हूँ, 01157100971 है हमारे स्टूडियो का नंबर। सो आप इस नंबर के थ्रू हमसे शेयर कर सकते हैं अपने ख्यालात, अपने जज्बात, और ये कि आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगी। और ऐसी मज़ीद मज़े मज़े की रेसिपीज़ को जानने के लिए हमारे चैनल को इसी तरह से विज़िट करते रहिए। सो लिसनर्स एंड माय लवली डिवास, बहुत होगी बातचीत किचन की, घर की, मोटिवेशन की, अब बात करते हैं कुछ एंटरटेनमेंट की। तो लिसनर्स, आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग सी रिकमेंडेशन फॉर दोज लिसनर्स जो हैं सीरीज फैंस। और बहुत सारे लोग तो मैंने ऐसे भी देखा है कि उन्हें बहुत ज़्यादा एडिक्शन होती है सीरीज से, और वो वेट करते हैं कि कब उनके फेवरेट सीजन का नेक्स्ट पार्ट आएगा। सो आई थिंक आप सभी लिसनर्स की इस क्रेजीपन को देखते हुए
नेटफ्लिक्स ने लॉन्च की हैं कुछ न्यू सीरीज एंड आई होप सो कि आपको वो तमाम दर सीरीज बहुत अच्छी लगेंगी और टोटली न्यू हैं, बिल्कुल न्यू माइंडसेट के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। सीरियल लिसनर, जैसा कि डेली बेसिस पे हम बहुत सारे काम काज करते हैं, लाइफ बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी है, हर वक्त काम काम काम, इन सब चीज़ों से इंसान थोड़ा थक जाता है, थोड़ा बोर हो जाता है, तो इंसान को ज़रूरत होती है खुद को फ्रेश करने की, फ्रेश करने के साथ साथ कुछ नया कुछ डिफरेंट देखने की। सो आज की सीरीज रिकमेंडेशन में मैं लाई हूँ अपने तमाम द लिसनर्स के लिए अ न्यू लॉन्च सीरीज Finding Her Edge। So basically it's a series जो कि एक book adaptation है और बहुत famous author की book से inspire होकर लिखी गई है। I know these days ये Netflix पे बहुत ज़्यादा trend कर रही है, तो आप सभी listeners के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना यही recommendation लेकर आई जाए। So last में इस series को देखें। अगर हम सीरीज़ के कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात करें तो थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं ताकि आपका curiosity level इंक्रीज हो जाए, प्लस आपके लिए बिल्कुल भी स्पॉइलर ना हो। सो बेसिकली ये जो सीरीज है ये इस चीज़ को दिखा रही है, इस चीज़ को प्रेजेंट कर रही है कि किस तरह से आर्टिस्ट को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है खुद की कला को लोगों को दिखाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और खुद को मनवाने के लिए। बेसिकली इस सीरीज के अंदर है बहुत ज़्यादा ड्रामा, बहुत ज़्यादा इमोशन और डिफरेंट तरह के प्लॉट ट्विस्ट, और सबसे बढ़कर ये कि इस सीरीज का जो मेन गोल और मेन फोकस है वो एक ही चीज के गिर्द घूम रहा है जो कि है स्केटिंग। सीरीज के ग्राफिक्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, प्लॉट बहुत अच्छा है, रोमांटिक है, लव स्टोरी है, साथ ही साथ इमोशनल ड्रामा भी है। तो लिसनर्स लास्ट में इस सीरीज को देखिएगा एंड थैंक्स मी लेटर, क्योंकि ये सीरीज होने वाली है आप सभी की फेवरेट और आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। तो जी लिसनर्स, लास्ट में इस सीरीज को देखिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लगी और आपका डिफरेंट कैरेक्टर्स के बारे में क्या कहना है। सो बेसिकली इस सीरीज का जो मेन करेक्टर है, यानी कि जो मेन करेक्टर है जिसके गेत ये स्टोरी बहुत ज़्यादा रोटेट कर रही है, वो है एड्रियाना रूसो। सो एड्रियाना रूसो के गेत ये स्टोरी घूम रही है और उसकी दो बहनों के गेत के किस तरह से वो अपने ड्रीम्स को पूरा करती हैं, किस तरह से उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है फैमिली का, सक्सेसफुल होने का, अपने गोल को अचीव करने का, साथ ही साथ अपनी लव लाइफ को भी। सो बहुत ज़्यादा टर्म्स एंड ट्विस्ट हैं। ऑनेस्टली जब मैंने पिछले दिनों ऑफ कैंपस कंप्लीट की थी तो मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही थी क्योंकि कुछ भी न्यू समझ नहीं आ रहा था। मैं चाहती थी कि कुछ ऐसा हो जो ऑफ कैंपस से रिलेट करे, थोड़ा इमोशनल हो, थोड़ा सेंटिमेंटल हो। सो फिर रिसेंटली एकदम से मेरे माइंड से, मेरे नज़रों के सामने से ये सीरीज़ गुजरी। सो मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई इट, देखते हैं। और ट्रस्ट मी, जब मैंने सीरीज़ को देखा तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा मैजिकल थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। शॉर्ट सीरीज है, 8 ही एपिसोड्स हैं क्योंकि अभी इसका फर्स्ट सीजन रिलीज हुआ है। सो अगर आप थोड़ा सा टाइम निकालें तो आप इस सीरीज को दे सकते हैं, और आई थिंक जब आप इस सीरीज को देखेंगे तो आपकी जो लाइफ में टेंशनें चल रही हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है, वो तो कम हो गई होगा, साथ ही साथ आपको एड्रियाना रूसो से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। सो लिसनर्स, आज ही ज़रूर ट्राई करिए, बल्कि आज ही देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, और ऐसी मज़ीद मज़े मज़े की रिकमेंडेशंस के लिए भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जी लिसनर्स, इसी के साथ ही अभी वक्त हुआ है हमारे शो में एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। आई नो बातें करते करते करते इतना मज़ा आ रहा होता है समटाइम्स, दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन माई लवली डिवास कमर्शियल ब्रेक पर जाना पड़ेगा। सो जी लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, चलते हैं, बढ़ते हैं आगे ब्रेक की जानेब। और ब्रेक से वापसी पर आकर हम बात करेंगे उन टॉपिक्स पे जो कि हैं डिवास के फेवरेट, जैसे कि ब्यूटी और मेकअप। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक।

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं द टीवा डायलॉग विद रेडियो फजा 97.1 FM। जी हेलो लिसनर्स, जैसा कि आपको और मुझे साथ में हो चुके हैं अब तकरीबन काफ़ी समय, तो जी बात करते हैं, जैसा कि बात कर रही थी हम डिवास की, तो डिवा इज़ अ गर्ल जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा मॉडर्न और बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक हो। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत सारे लोग आजकल तो ये चीज़ बहुत कम हो चुकी है, मगर मिड 90s में इस कॉन्सेप्ट को लोग बहुत ज़्यादा देखा करते थे और ऐसा समझा जाता था कि डिवा मीन्स कि अ प्रेटी वूमेन, अ वूमेन दैट हैज़ ब्यूटिफुल फेस, ब्यूटिफुल फीचर्स एंड ब्यूटिफुल बॉडी। बट आजकल के दौर में इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी नहीं देखा जाता, हर एक इंसान ही खूबसूरत होता है, प्यारा होता है, जैसे कि आप भी बन सकते हैं डिवा, लेकिन ऑल यू नीड इज़ टू जस्ट फिक्स सम ऑफ योर पॉइंट्स, आप उन चीज़ों को फिक्स कर लें एंड देन आप भी उतनी खूबसूरत बन सकती हो, उतनी प्रिटी बन सकती हो, जैसा कि हमारी तमाम तर डिवास, हमारी तमाम तर लिसनर्स जो कि डेली बेसिस पर एक हैक्टिक रूटीन को फेस करती हैं, वर्क वूमेन हैं, इसके अलावा अगर आप वर्क वूमेन नहीं हैं तो आपको घर में करना पड़ता है बहुत सारा काम, और आई नो कि समहाउ इंसान कामों में इतना बिजी होता है कि इंसान का ध्यान तवज्जो किसी और जानिब तो जाती ही नहीं है, इंसान बस टोटली यही सोचता है कि काम पे ध्यान दूँ, काम पे फोकस करूँ, लेकिन इन तमाम तर चीज़ों में हमारी डिवास जो एक चीज़ स्किप कर देती हैं वो है स्किन केयर, और ऑनेस्टली स्किन केयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि हमारी स्किन को भी हमारी त्वचा की ज़रूरत होती है, लेकिन हम क्या करते हैं कि बस काम में लगे रहते हैं, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, और हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जस्ट फ्यू स्टेप्स को फॉलो करने से आप अपनी खूबसूरत सी स्किन को मज़ीद खूबसूरत बना सकती हैं और अपनी पर्सनैलिटी के अंदर भी वो निखार पैदा कर सकती हैं।

तो लिसनर्स, मैं यही कह रही थी कि हर एक इंसान को थोड़ी सी खुद की भी केयर करने की ज़रूरत होती है, जैसा कि आपके बालों को, आपकी स्किन को, आपकी आईज़ को, हर एक चीज़ को। और हम इस चीज़ को स्किप कर देते हैं, बिल्कुल ही फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन जस्ट फ्यू स्टेप्स को फॉलो करने से स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि कुछ ऐसा रूटीन पैटर्न जिससे आपने डेली बेसिस पर तो नहीं करना, लेकिन वीक में 2 to 3 times करने से आप खुद को खूबसूरत चेंज कर सकते हैं। वो ये है कि सबसे पहले आपने अपने बालों पर ध्यान देना है, क्योंकि mid-90s में कहा जाता था कि हेयर जो है, यानी कि बाल, औरतों की खूबसूरती की अलामत होते हैं, और जिसके जितने लंबे, जितने घने और जितने ही स्याह खूबसूरत बाल होते हैं, वो इंसान उतना ही ज़्यादा खूबसूरत और सुंदर होता है। लेकिन आजकल के इस मॉडर्न दौर में हम लोग समझते हैं कि शॉर्ट लेंथ हेयर्स आर ब्यूटीफुल, और हम तरह तरह के डाइस कर लेते हैं बालों को, लेकिन असल खूबसूरती तो खूबसूरत काले स्याह बालों में होती है। तो लिसनर्स, आपने क्या करना है अपने बालों की केयर के लिए, सिंपली आज 2 to 3 steps को आपने फॉलो करना है, वीक में 2 to 3 times आपने इस रूटीन को फॉलो करना है, एंड यू विल सी द रिजल्ट्स मैजिकली। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ले लेनी है भिंडी, जो कि हम भिंडी की बात कर रहे थे, जब आप आज रेसिपी बना चुके हैं, जो एक्स्ट्रा भिंडी बच जाए आप उसको यूज़ कर सकती हैं। आपने उसको बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेना है, कट करने के बाद अच्छी तरह से आपने भिंडी को बॉयल कर लेना है, ठीक है। आपने इतना ज़्यादा बॉयल करना है कि भिंडी के तमाम तर इंग्रेडिएंट्स उस पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाएं, और जैसे ही पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाएं तो आपने उस पानी को एक स्प्रे बॉटल, जो कि वो पानी काफ़ी ज़्यादा जेल फॉर्म में बन जाएगा, उस पानी के अंदर आपने शामिल करना है एलोवेरा जेल, और इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्सअप करके एक बॉटल के अंदर आप डालकर इसके अच्छी तरह से फ्रीज कर लें। बस आपने करना क्या है कि वीक में 2 to 3 times जब आप शावर लेने लगें, सो शावर लेने से 1 घंटा पहले आपने इस मास्क को अपने बालों में अप्लाई करना है, अच्छे से बालों की रूट्स में, टिप्स में और हर जगह आपने इसे लगा देना है। इससे ये होगा कि आपके जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत, सिल्की, शाइनी दिखेंगे, और 1 to 2 applications के बाद आपको रिजल्ट फील होगा और आपको लगेगा कि आपके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। सो बालों की केयर बहुत ज़रूरी है, इसके साथ ही आपने वीक में 3 times इस रेमेडी को लाजमी करना है, ठीक है। एंड सेकेंडली, जैसा कि आज हम बालों की बात कर रहे हैं, खूबसूरती में बालों का भी एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जहाँ स्किन केयर की बात हो वहाँ हेयर केयर ज़रूरी है। सो ये तो था आज का एक मास्क जिसे आपने सिंपली वीक में 3 times अप्लाई करना है। देन सेकेंडली आपने क्या चीज़ करनी है अपने बालों को खूबसूरत बनाने के लिए, वो ये है कि हफ्ते में 2 to 3 times ऑयलिंग। ऑयलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और बहुत सारे लोग इसको स्किप कर देते हैं, जस्ट ये सोच कर के बाल रूखे लगेंगे, बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे, प्रेजेंटेबल नहीं दिखेंगे। बट ट्रस्ट मी ऑनेस्टली, जिस तरह से हमारी बॉडी को खाने की, फूड की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारे बालों को ऑयल की ज़रूरत होती है। सो आप हफ्ते में 2 to 3 times शावर लेने से 1/2 घंटा पहले अपने बालों में, अपने स्कैल्प में, रूट्स में, टिप्स में अच्छी तरह से ऑयल मसाज करें। ऑयल मसाज करने के बाद आप जाके इसे 20 to 30 minutes रखें और फिर शावर ले लें।

जी तो लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये साउंड ट्रैक? उम्मीद करती हूँ साउंड ट्रैक अच्छा लगा होगा। और वैसे भी अक्सर होता है ना कि जब हम बहुत ज़्यादा सीरियस टाइप की गुफ्तगू करते हैं, कुछ भी लाइफ में हेक्टिक चल रहा होता है, तो हल्का सा जो म्यूज़िकल ब्रेक है वो हमारे मूड को बिल्कुल रिफ्रेश कर देता है, मूड को बहुत अच्छा कर देता है। तो जी लिसनर्स, अब बात करते हैं अपने शो के लास्ट सेगमेंट के हवाले से, जो कि है मेरा आपका बल्कि हम सभी का फेवरेट, क्योंकि इस पे हम डिस्कस करते हैं डेली बेसिस पर एक इंस्पिरेशनल आइकॉनिक डीवा की कहानी। सो वैसे कहा जाता है, नॉर्मली तौर पर कहा जाता है, टर्न योर वाउंड्स इनटू विजडम एंड योर सेटबैक्स इनटू कमबैक्स। आज मैं आप सबको लेकर चलूंगी बल्कि एक खूबसूरत, एक ऐसी मोटिवेशनल कहानी की जानिब जो कि आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा बदल देगी, ना सिर्फ बदल देगी बल्कि एक अलग तरह की मोटिवेशन भी लेकर आएगी। सो बेसिकली आज मैं आपको एक ऐसी आइकॉनिक वुमेन की कहानी सुनाऊंगी जिन्होंने पूरी दुनिया में साबित कर दिया कि अगर एक औरत ठान ले तो दुनिया का कोई तूफान, कोई हादसा, कोई रास्ता उन्हें नहीं रोक सकता। ये कहानी इतनी फिल्मी और इतनी हैरान कुन है कि इसे सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि वाओ, इट्स आइकॉनिक। हम बात कर रहे हैं दुनिया भर पर राज करने वाली मलेशियन सुपर आइकॉनिक डीवा श्री। तो बेसिकली आज हम बात करने जा रहे हैं जिन आइकॉनिक डीवा की, इनका नाम है श्री माइकल। सो बेसिकली कहानी शुरू होती है मलेशिया के एक छोटे से शहर से, जहां 1962 में एक मासूम खूबसूरत प्रीटी सी बच्ची पैदा हुई। उस बच्ची का सिर्फ एक ही सबसे बड़ा ख्वाब था कि दुनिया की सबसे बेहतरीन बैली डांसर बने। वो इस ख्वाब के पीछे इतना ज़्यादा क्रेजी थी कि सिर्फ 4 साल की उम्र से ही उन्होंने इसे एज अ पैशन स्टार्ट कर लिया। बाद में वो मलेशिया छोड़कर लंदन चली गई ताकि दुनिया को सबसे बड़े इंस्टीट्यूट से वो प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग कर सके। जी तो लिसनर्स, वो कहा जाता है ना कि जिंदगी हमेशा हमारे मुताबिक नहीं चलती। सो लंदन में पढ़ाई के दौरान एक दिन उनकी पीठ यानी कि स्पाइनल कोर्ड पर एक इतना भयानक हादसा रोनमा हुआ कि जिसके तहत उन्हें बहुत ज़्यादा इंजरीज आई और डॉक्टर्स ने यहाँ तक कह दिया कि अब वो कभी भी एक प्रोफेशनल डांसर नहीं बन सकेंगी। आई नो आप सभी भी सोच रहे होंगे कि कितना इमोशनल, कितना इमोशनल मोमेंट होगा कि जब एक 16 साल की बच्ची को, जिसका एक ड्रीम था, बल्कि ना सिर्फ वो एक ड्रीम था, वो इतना ज़्यादा पैशनेट थी कि उन्होंने बकायदा तौर पर इसकी ट्रेनिंग के लिए अब्रॉड मूव ऑन किया। और जब उन्हें पता चले कि अब वो अपने इस पैशन को, इस ड्रीम को कंटिन्यू नहीं कर सकती, तो इंसान कितना ज़्यादा टूट जाता है, डिसहार्ट हो जाता है। आप में हम सब तो इसी तरह से ही फील करते हैं, लेकिन जिसकी पूरी दुनिया सिर्फ एक डांस थी, उसका सबसे बड़ा ख्वाब एक पल में टूट कर रह गया। लेकिन वो एक असली डीवा थी, उन्होंने हार माना सीखी नहीं थी। उन्होंने कहा कि मेरा एक रास्ता अगर चलो बंद हो गया तो ज़िंदगी अभी बाकी है। वो वापस से मलेशिया आई, उन्होंने 1983 में मिस मलेशिया का खिताब जीता और यहाँ से उनका एक नया सफ़र, एक नया डेस्टिनेशन स्टार्ट हुआ। और इसी तरह से उन्होंने अपना स्टार्टअप लिया एक्टिंग की दुनिया में। सो बेसिकली लिसनर्स, आज की जो हमारी ये स्टोरी है, ये हमारे आज के मोटिवेशनल कोट से रिलेट कर रही है कि जब इन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा तो उन्हें आम फिल्मों की तरह सिर्फ रोने धोने वाले या फिर छोटे मोटे रोल्स ही मिला करते थे, लेकिन उन्होंने इन तमाम तरह के करेक्टर्स को करने से मना कर दिया। उन्होंने मार्शल आर्ट्स और किंग फू सीखा। आपको हैरत होगी ये जानकर के किंग कि इस एक्शन फिल्मों में उन्होंने जैकी चैन जैसे बड़े बड़े एक्शन हीरोज के साथ काम किया और दुनिया को तब तक हैरान किया जब लोगों को मालूम हुआ कि आपने सारे डेंजरस स्टंट्स खुद से किए हैं, खुद बिना किसी एआई के यूज़ किए, बिना किसी एक्टिंग के। उन्होंने स्टंट्स करते हुए अपनी बाज़ोकात समटाइम्स ऐसे सिचुएशंस भी होती थी कि जब आपको चोट लगती थी, आप हर्ट होते थे, बट स्टिल वो चाहती थी कि वो कुछ डिफरेंट करे, कुछ यूनिक करे और कुछ ऐसा करें जो कि दुनिया के लिए इंस्पायरिंग हो।
तो देखा आप सबने कि किस तरह से जब उनका एक ड्रीम पूरा नहीं हो रहा था तो उन्होंने हार नहीं मानी, अपनी जिंदगी को एक्सपेंड किया, एक नए ड्रीम की जानेब बढ़ी, कुछ नया करके दिखाया। तो सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट तो मलेशिया से लिया था, फिर उसके बाद हांगकांग, और फिर उन्होंने अपना रुख किया हॉलीवुड की जानेब, जहां एशियन एक्टर्स को सिर्फ छोटे मोटे रोल दिए जाते थे। वहां माइकल ने ऐसे खूबसूरत रोल किए जिन्हें दुनिया भर में बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। जेम्स बॉन्ड की फिल्म टुमारो नेवर डाइज की, फिर उनकी जो फिल्म क्रंचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन ने पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा उनको पसीराई दी, और आज भी लोग इस तरह की फेमस, इस तरह की आइकॉनिक मूवीज़ को देखते हैं, याद करते हैं। उन्होंने अपनी फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए हॉलीवुड के सबसे बड़े अवार्ड द एकेडमिक अवार्ड, जिसे हम ऑस्कर अवार्ड्स भी कहते हैं, बेस्ट एक्ट्रेस का जीता। तो ये थी हमारी प्यारी सी मोटिवेशनल सी आइकॉनिक डीवा की स्टोरी, जिनकी स्टोरी से हम सभी को ये चीज़ सीखने को मिली, देखने को मिली कि किस तरह जब इंसान का एक ड्रीम पूरा नहीं होता तो इंसान को आगे ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। तो देखा आप सब ने किस तरह से हमारी प्यारी आइकॉनिक डीवा ने खुद का रुख चेंज किया, मिस मलेशिया बनी। मिस मलेशिया बनने के बाद साथ ही एक्टिंग स्टार्ट की। एक्टिंग में भी ना सिर्फ मलेशियन एक्टिंग मूवीज बल्कि इसके अलावा भी हॉलीवुड में कदम रखा और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फेमस मूवीज़ करके हमें दिखाई, ना सिर्फ मूवीज़ की बल्कि इंटरनेशनल अवार्ड्स तक जीते। तो इन्हीं तरह की खूबसूरत आइकॉनिक लेडीज़ हैं जिनकी ज़िंदगी से मुझे, आपको, हम सबको सीखने की ज़रूरत है कि बाज़ोकात समटाइम्स हम जो सोचते हैं, हम जो देखते हैं, वो होता नहीं है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस एक मोमेंट में रुक जाते हैं। अगर वो भी ऐसा करती कि वो रुक जाती, बस डिसहार्ट हो जाती, इमोशनल हो जाती और सोचती कि लाइफ इज एंड, तो क्या आज उनकी ये खूबसूरत आइकॉनिक स्टोरी मुझे, आपको, हम सबको सुनने को मिलती? नहीं ना। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर इंसान का एक दरवाज़ा बंद हो, इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है कि दूसरी जगह उन्हें वो पसीराई ना मिलती जो उन्हें एक्टिंग में मिली। सो माय ऑल लवली डीवास, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, बी पॉजिटिव, ऑलवेज रिमेंबर के व्हेन वन डोर्स क्लोज अनदर ओपन फॉर अस। सो इस उम्मीद के साथ हमारे शो का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद करते हूँ लिसनर्स आप सभी को ये शो बहुत अच्छा लगा होगा, और बातें करते करते, गुफ्तगू करते करते वक्त का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ, और फाइनली आपके और मेरे साथ को 2 घंटे करीब होने वाले हैं।

इसी के साथ लिसनर्स, मुझे अपनी हो जैनब फातिमा को दे इजाजत। जाते जाते एक बार फिर से आपको बताती चलती हूँ, 01157100971 ये है हमारे स्टूडियो कॉल नंबर। सो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपको आज की रेसिपीज कैसे लगी और इन ब्यूटी टिप्स से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए। इसके साथ ही radiofaza.com.uk हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप हमें ट्यून कर सकते हैं, और हमारी एप्लीकेशन रेडियो फजा 97.1 FM को बआसानी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जी लिसनर्स, इसी के साथ मुझे अपनी होस्ट जैनब फातिमा को दे इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा पॉजिटिव रहिए, क्योंकि शो ख़त्म होने जा रहा है लेकिन आपका दिन, आपका वक्त अभी बाकी है। और कोशिश करिए कि इस मंडे को एनर्जेटिक मंडे और मोटिवेशनल मंडे बनाइए। चलिए जी, खुदा हाफिज। जाते जाते ये खूबसूरत सा साउंड ट्रैक सुनते रहिए।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंकिंग रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू।

इनकी जाहिर सी बात है, जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं अपने मनपसंद ट्रैक, तब तक आप सुनिए गासलू राज के पसंदीदा ट्रैक्स। सो मैं भी आपको बताऊंगी कि मेरा दिन कैसे गुजरा, मतलब मेरे वीकेंड कैसे गुजरे, इस बारे में मैं आके डिस्कस करूंगी। बल प्रोग्राम में जो है वो चुनकर एक ट्रैक प्ले करेंगे, प्रोग्राम का आगाज करेंगे एक खूबसूरत से ट्रैक के साथ। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं वीकेंड पे जो क्या नाम है काम करती हूँ, जो चीज़ें सुनती हूँ, जो ट्रैक सुनती हूँ, वो मैं मंडे को आपके दरमियान शामिल करती हूँ आके। फिर वो सिचुएशन के हिसाब से प्ले किए जाते हैं, बट सिचुएशन कुछ ऐसी ही है या वैसी है, आई डोंट नो कैसी है, बट प्रोग्राम इस ट्रैक को शामिल कर देते हैं। इस ट्रैक के उस पार है कि आपसे मुलाकात, इसको ज़रूर सुनिएगा, गौर से सुनिएगा और साथ दीजिएगा मेरा। सो स्टे ट्यून फॉर 97.1 FM एंड डैप, मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। सर, प्रोग्राम का आगाज के खूबसूरत से ट्रैक के साथ ही मेरा पसंदीदा ट्रैक बन गया। आई डोंट नो क्यों बन गया। मैं दो तीन दिन से इस ट्रैक को बहुत ज़्यादा, दो तीन दिन ही मेरे ख्याल में, तीन चार दिन हो गए मैं इसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो सुन रही। तो मुझे ऐसा फील होता है कि मतलब मैं आपको कहती हूँ ना कि मतलब ट्रैक्स के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है, लेकिन कुछ ट्रैक सुन के ऐसा फील होता है कि ये ट्रैक बने ही हमारे लिए।

हाँ तो वो बात करते करते बात भूल गई कि मैं बात कर क्या रही थी, मैं भुलक्कड़ बहुत हो गई हूँ। सो अब बात ये करती थी कि मैं इस ट्रैक को काफ़ी दिनों से सुन रही हूँ, मुझे ऐसा फील होता है कि ट्रैक मेरे लिए बना है, आई डोंट नो ऐसा है या नहीं, बट वो फीलिंग पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की फीलिंग्स लेके जो है आप आज के दिन को चलेंगे लेके। बट प्रोग्राम में आपको इन्फॉर्मेशन पर बात करेंगे, इसमें छोटी मोटी गपशप आपके साथ लगी रहेगी।

सुबह आगे पीछे से आवाज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना जो है रूम को बंद कर दिया जाए, बस स्टूडियो का डोर बंद ही हो तभी जो है प्रोग्राम अच्छे से हो सकता है। प्रोग्राम में जो है आज के दिन जो है हम जो बात शामिल करने वाले हैं कुछ इस तरह से है कि ज़िंदगी के रिलेटेड बात है, और बात कुछ इस तरह से, मतलब इसके अल्फाज बहुत छोटे हैं लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा होगा। ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी हम लोग सोचते हैं। और मेरे ख्याल में ये बात वाकई में है कि ज़िंदगी आसान वाकई नहीं होती है, उसको आसान बनाना पड़ता है। मुश्किलात जो है वो ज़िंदगी में आती रहती हैं, बट उसको कैसे फ़ेस करना है, उसको कैसे लेकर चलना है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे फ़ेस करते हैं, उसको कैसे कैरी करते हैं। अक्सर जो है हम लोग जो है ये सोच लेते हैं कि कामयाबी, खुशी या फिर अपने ख्वाब पूरा करना बहुत आसान है, या फिर उन लोगों को पा लेना जो जिनका आपकी ज़िंदगी में शामिल होना एक मैजिक हो, एक ख्वाब हो, मतलब अचानक से वो चीज़ आपको मिल जाए और आप बोलें कि वाह यार ये मतलब ये कैसे हो गया, एकदम अंदर शॉक्ड हो जाता है, वो वाला सीन हो जाता है। सो ये चीज़ आसान नहीं है। किसी इंसान को पाने के लिए अच्छा नसीब चाहिए होता है, और कोई और चीज़ ख़रीदने के लिए इंसान के पास पैसा होना चाहिए, कामयाबी होनी चाहिए, कामयाब होगा तभी उसके पास पैसा होगा। सो इसी तरह अमली ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किल जो हैं वो आती रहती हैं, ज़िम्मेदारियाँ, नाकामियाँ और बहुत सी ऐसी बातें जो है ना वो ज़िंदगी को ऊपर नीचे लेके चलते रहते हैं। बट वही बात आ गई कि किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए इंसान के पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है। मेरी अभी मेरे यहाँ से कुछ दिन पहले किसी के साथ बहस हो रही थी कि पैसा जो है सब कुछ नहीं है, बट मुझे अब लगता है कि पैसा ही सब कुछ है। और बात की जाए किसी इंसान को पाने की, तो नसीब जो है वो हर किसी के पास नहीं होता। किसी इंसान को पाने के लिए इंसान के पास नसीब होना चाहिए जो हर किसी के पास नहीं होता। पर ये भी हो सकता है कि शायद वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आपको सबक देने के लिए आया हो, या फिर वो इंसान आपको बुरे कामों से रोकने के लिए आया हो। इंट्री जो है वो हो जाती है, लेकिन अब उस इंट्री का असल मकसद क्या है ये चीज़ समझ में नहीं आती। और वो कहते हैं ना, आई नो आई एम नॉट योर पहला प्यार बट आई वॉन्ट टू बी योर आखिरी प्यार। मतलब हर बंदे की यही तमन्ना होती है। खैर जो है बात को आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में जो टॉपिक शामिल करवाया हुआ है, ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती जितनी हम लोग सोचते हैं। सो इसके हवाले से इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाएंगे, कोई इन्फॉर्मेशन आप हम तक पहुँचाना चाहें तो आप भी पहुँचा सकते हैं। नंबर बड़ा ही प्यारा है जिन नए लोगों ने आज रबी फजल 97.1 FM को ट्यून किया है, बेहद शुक्रिया आप तमाम समातों का। नंबर नोट कीजिएगा 1157100971। सवाल प्रोग्राम में जो है वो ट्रैक को प्ले कर देते हैं। शामिल कर चुकी खूबसूरती आवाज़ आपके और अपने दरमियान, कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम में सैड ट्रैक शामिल नहीं करें क्योंकि सेंटी वेंटी वाला माहौल नहीं बनाना। वीकेंड को जो है मंडे मेलोडीज़ जो है हम आपके साथ अच्छे से लेकर चलेंगे। मंडे का दिन अच्छे से गुजारेंगे तभी आपका पूरा वीक अच्छे से अच्छा गुजरेगा। सो अभी के लिए कहीं नहीं जाना, जुड़े रहना है फजा के साथ विद सलू राज। मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार।

जी हाँ, तो वन सेकेंड वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 FM के लाइव स्टूडियो से। सर प्रोग्राम में एक और ट्रैक शामिल किया था, उसके बाद आपसे ही मुलाकात प्रोग्राम में शामिल कराया था। बड़ी खूबसूरत सी बात, बड़ी ही मज़ेदार की इन्फॉर्मेशन, और इस इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुँचाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बट एक बार फिर से बता देते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो क्या है, आज की जो बात है वो क्या है कि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती जितनी हम सोचते हैं। बिल्कुल, प्रोग्राम में जो ट्रैक शामिल किए जा रहे हैं, आप ट्रैक शामिल करवा सकते हैं उन लोगों के लिए जिनको आप, मतलब जिनके साथ अपने दिल की फीलिंग्स शेयर नहीं कर सकते, उनको आप ट्रैक के बदले जो है ना वो अपनी बात पहुँचा सकते हैं। बट समझने वाले समझ जाएंगे, नहीं समझने वाले नहीं समझेंगे।

और बात कर रहे थे कि ज़िंदगी में क्या गैर यकीनी चीज़ जो है ना वो होती रहती है, बहुत सी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती लेकिन हम उस पर इतना यकीन कर सकते हैं कि जो भी चीज़ ज़िंदगी में होती है वो अच्छे के लिए ही होती है। इस जुमले का मकसद अब मतलब ये नहीं था कि आपको मायूस करना है, बल्कि हकीकत पसंद लोग, हकीकत पसंद लोग जो है ना वो ज़िंदगी में बहुत कामयाब होते हैं। और जब इंसान ये समझ लेता है ना कि मुश्किलात ज़िंदगी का हिस्सा है, तो वो ज़्यादा सब्र से काम लेता है, बल्कि ना कि वो चिल्लाता है, परेशान होता है। नाकामी से जो है वो इंसान सीखता है कि आगे बड़े बड़ी पोजीशन पे जाकर इंसान ने क्या करना है। सो मेरे ख्याल में एक चीज़ की आपको हकीकत पता चल गई है, तो उस चीज़ को छोड़ देना कोई बहादुरी नहीं है, बल्कि उस चीज़ को रह के फेस करना ये बहादुरी है। और ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम छोड़ते रहेंगे तो ज़िंदगी में हम बहुत पीछे रह जाएंगे। बहुत सी चीज़ों को जो है जिस तरह मतलब बहुत से ऐसे रिश्ते होते हैं जिनको हमने उनके रिश्तों के समय उनको कबूल करना पड़ता है। इट्स मीन के जब आप किसी इंसान के साथ अटैच हो जाते हैं, ज़िंदगी में जो है वो इंसान की एंट्री ज़रूर होती है। तो अगर किसी के साथ आप अटैच हो गए हैं, तो अगर आप उसको उस हद तक चाहने लग गए जिस हद तक आपने कभी भी किसी को नहीं चाहा, अटैचमेंट इस हद तक हो गई है कि आप दोबारा जो है उस चीज़ से हट ही नहीं पा रहे, मतलब वो हट पा ही नहीं रहे, दोबारा का क्या मतलब है हट पा ही नहीं रहे, तो मेरे ख्याल में अगर आप वहाँ से नहीं हट पा रहे, समझदारी से चीज़ में कि आप उनकी गलतियों, खामियों, खूबियों समेत जो है ना वो इंसान को कबूल किया जाए, उनके साथ जुड़े रिश्तों को कबूल किया जाए, उनके साथ जुड़ी हर उस चीज़ को कबूल किया जाए जो उनके साथ हैं। और मेरे ख्याल में यही चीज़ जो है ना इंसान को सिखाती है कि उसने आगे ज़िंदगी में किस तरह से अपने आप को लेकर चलना है। सच सुनने के बाद हम लोग जो है अक्सर शौक में चले जाते हैं कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया, क्या मतलब वो धोखा देने वाली बात आ गई ना। मैंने कहीं पढ़ा था कि मैंने धोखा देने वाले इंसान के मुंह से कभी ये चीज़ नहीं सुनी कि यार मैंने धोखा दिया, ये हो गया। मतलब मैंने यही चीज़ देखी है कि उस टाइम पे ये सिचुएशन हो गई थी तो ऐसा हो गया था, तो मुझे ऐसा करना पड़ गया, तो फिर मैंने तुम्हें धोखा दे दिया। सो ये चीज़ कभी नहीं सुनी कि यार मेरी गलती है। बट गलती किसी की भी नहीं होती, वक्त बुरा होता है। अब वो कहते हैं ना ज़िंदगी से यही गिला है कि तू बहुत देर से मिला है। पर अक्सर देर से मिली की चीज़ें भी जो है ना वो बहुत काम आती हैं। तो अगर कोई चीज़ आपको देर से मिली है, सो मेरे ख्याल में वो भी ऊपर वाले की जो है ऊपर वाले का करम है आप पे कि वो चीज़ आपको मिल गई है। वरना मेरे ख्याल में तो अगर आपके पास अगर आप उस चीज़ को अपने पास रखना भी चाहते हैं ना, तभी आप उसको नहीं रख पाएंगे जब तक आप पे ख़ास करम नहीं होने वाला। सो कहने का मकसद ये था कि ज़िंदगी में जो है वो ऐसे वैसे मस्ते आते रहते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। जब इंसान जो है वो समझ लेता है हर सिचुएशन को, हर चीज़ को, तो ज़िंदगी को बहुत अच्छे से लेकर चलेगा। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को समझे बगैर जो है वो भागते जाएंगे तो मेरे ख्याल में ये चीज़ नहीं हो पाएगी। ज़िंदगी में अगर किसी को कबूल करना है तो उसको उसकी खूबियों खामियों समेत कबूल करें, उसके साथ जुड़े हर रिश्ते को कबूल करें। ज़िंदगी आपको और आसान लगने लग जाएगी। ज़िंदगी को मुश्किल जो है हम खुद ही बनाते हैं बहुत सी बातें सोच सोच के कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये वक्त आ गया, अब इसको मैं कैसे कैरी करूँगी, इसको लेके कैसे मैं चलूँगी। मतलब हम हर चीज़ को खुद अपने सर पर जो है वो ना सवार कर लेते हैं, वैसे इतना बड़ा मसला होता नहीं है। सुबह प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड करते रहेंगे। एक तो जब भी टॉपिक जो है वो स्टार्ट होता है और बीच में जो है ना वो कमर्शियल ब्रेक जो आ जाती है ना तंग करने, वो हमें आके डिस्टर्ब कर जाती है और वो टॉपिक वहीं ठप हो के रह जाता है। बट हम इस बात को कंटिन्यू करेंगे आके प्रोग्राम में आपको प्रोवाइड करते रहेंगे इन्फॉर्मेशन। मेरी और आपकी होगी कम्युनिकेशन और होगी मिलकर इंटरटेनमेंट, क्योंकि इस खूबसूरत प्रोग्राम में ना सिर्फ हम लंच बॉक्स के डब्बे को ओपन करने के बाद खाना मिलता है, बल्कि बहुत सी ऐसी बातें छुपी होती हैं जो मैंने आप तक पहुंचानी है, और कुछ ऐसी बातें जो आपने मुझ तक पहुंचानी है। बट अभी के लिए प्रोग्राम एक छोटी सी ख्याल होने लगी है, सो स्टे ट्यून फजा 97.1 FM एंड ऐप। अभी तक के लिए कहीं नहीं जाना, जुड़े रहना है फजा के साथ विद सलूराज। मिलते हैं इस छोटी सी चुनमुन सी कमर्शियल ब्रेक के उस पार।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं तमाम सुनते भी समातों को रेडियो वजन 97.1 एफएम के लास्ट स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच फोक्स नाउ, जब आप सुन रहे हैं सलराज की। सुबह बीच में इंटरनेट इतना मसला कर देता है कि यार मैं आप तक आने में थोड़े से टाइम हो ही जाता है। मतलब शुक्र है आपने तो आपने बीजीएम नहीं सुना, बट ट्रैक सुने होंगे, बैक टू बैक म्यूजिक लगा होगा। बट प्रोग्राम में जो है वो आपका साथ देंगे ठीक और ठीक 2 बजे तक। सो बात कर रहे थे हम ज़िंदगी के हवाले से, और एक दफ़ा ब्रेक आ जाए ना फिर भुलक्कड़ सी और बातें भूल जाती हूँ कि बात करके आ रही थी। प्रोग्राम में बात को कंटिन्यू करेंगे, ज़रूर करेंगे, बट एक छोटी सी फरमाइश को पहले पूरा कर देते हैं। प्रोग्राम में शामिल करते हैं इस खूबसूरत से ट्रैक को, और मज़े की बात आपको बता देती हूँ कि

सो वेल, मैं बात कर रही थी कि मेरी लिसनर्स की फरमाइश मुझ तक पहुंचती है, और मज़े की बात वही कि मेरी और आपकी जो चॉइस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मैच होती है. मतलब जो ट्रैक मुझे पसंद होते हैं, आपको भी वही पसंद होते हैं. सो ये चीज़ मुझे बड़े मज़े की लगती है. और आइए प्रोग्राम में इस ट्रैक को शामिल करते हैं. वो मैं कहती हूँ ना कि जब आप किसी को अपने दिल की बात कहना नहीं चाहते, तब आप प्रोग्राम में ट्रैक शामिल करवा दें, किसी प्यारे को वो ट्रैक डेडिकेट करवा दें. बट मैं नाम नहीं लूँगी उनका. प्रोग्राम में इस ट्रैक को शामिल कर देते हैं. अब मे भी ज़रूरी नहीं है कि यार सिर्फ आपके चाहने वाले हों, हमारे भी तो होंगे. सो वेल, आइए प्रोग्राम में इस खूबसूरत आवाज़ को शामिल करते हैं. अभी तक के लिए कहीं नहीं जाइएगा, जुड़े रहना है फ़ज़ा के साथ विद सलू राज. मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार.

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामद करते हैं तमाम सोते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुने लंच बॉक्स लाउंज। सो प्रोग्राम एक छोटा सा ट्रैक शामिल किया था, उम्मीद करते हैं आपके ट्रैक पसंद भी आया होगा। बात करते हैं जिंदगी के हवाले से कि जिंदगी आसान नहीं होती, बल्कि उसको आसान बनाना पड़ता है। अगर जिंदगी में कोई छोटी कामयाबी भी हो रही है तो उसकी भी कदर करें, क्योंकि अगर आप छोटी छोटी चीज़ों की कदर करना शुरू करेंगे तो ज़िंदगी में जो है वो तभी आप आगे जाके बड़ी चीज़ों की कदर करेंगे। बल्कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ना शुक्र होते हैं, कदर नहीं करते। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। बेकदरी जो है ना वो इंसान को मार के रख देती है। वो कहते हैं ना कि जब इंसान को फिजिकल पेन हो तो वो उसको उल्टियाँ लग जाती हैं। मतलब अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे, मैं अभी अपनी फ्रेंड से इसी बारे में बात कर रही थी कि जब इंसान को फिजिकल दर्द होना तो वो आपकी बॉडी आपको एक इशारा देती है कि यार अब तुम इससे ज़्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते या नहीं कर सकती। सो वह उस टेंशन से खुद को निकाल लो। उसको निकालने के उस टेंशन से खुद को निकालने के लिए ये भी आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लेकर चलेंगे। जब तक दिमाग में एक ही चीज़ को लेकर चलते रहेंगे कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया, मतलब ज़िंदगी में जो है ऐसे मसले आते रहते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी कुछ लोग होंगे जो मेरे ख्याल में समझदार बंदा वही है जो बहुत से मसलों को लेकर भी ज़िंदगी को जो है वो अच्छे से इंजॉय करे, अच्छे से जिए। और ऐसे ही होना चाहिए। आपको जो है वो दूसरे को फील नहीं करवाना चाहिए कि आपको दर्द हो रहा है या आपको बुरा लग गया या आप हर्ट हो। ना भाई ना, ऐसा वाला सीन करना ही नहीं है। इंसान को उसकी खूबियों खामियों समेत कबूल करें, तभी आप जो है वो कल को आपको भी कोई अगर ऐसे शख्स मिले जो आपको आपकी खूबियों और खामियों समेत कबूल करे, तो मेरे ख्याल में आप में फिर उस शख्स में कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं रहा। जब आप दूसरे की कदर करेंगे तभी आपकी लोग कदर करेंगे।

सादगी जो है ना वो इंसान को मार देती है आके, और इतना भी सादा नहीं होके रहना चाहिए मेरे ख्याल में। एक तो फेस ऐसा होता है, फेस कट ऐसा है कि इंसान को जो है वो बच्चों वाला देखता तो वो कहते यार ये तो बच्ची है अभी, इसको मैं कैसे ही लेके चल सकता हूँ। बट बच्चा कोई भी नहीं होता। ज़िंदगी जो है वो इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। ज़िंदगी में कोई भी इंसान बच्चा नहीं होता, सबको पता होता है कि किस चीज़ को लेकर कैसे चलना है, किसको लेकर कैसे चलना है। सो आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल दें कि आप अगर किसी के साथ किसी तरह के भी रिलेशनशिप में है तो आप उसको सिर्फ इस वजह से छोड़ रहे हैं कि वो बच्चा। नो यार, बच्चे से क्या हो जाता है, कोई भी आजकल बच्चा नहीं है, सब बच्चे हुए हैं मेरे ख्याल में तो।

वर बात कर रहे थे कि अपने आप को जिंदगी में अगर आप अहमियत देंगे सबसे पहले, तभी आप दूसरे इंसान को भी अहमियत दे पाएंगे, फिर आपकी भी अहमियत, आपके दूसरे इंसान की जिंदगी में आपकी भी अहमियत कोई ना कोई फिर होगी। बट जब तक आप किसी दूसरे को पहल पे रखेंगे और अपने आप को बाद में रखेंगे, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ जो है नहीं अच्छी। जब आप अपने आप को अहमियत देंगे तब आप दूसरों को भी अहमियत देंगे। ज़िंदगी में जो है वो बहुत सी ऐसी चीज़ों को जो एक्सेप्ट करना पड़ता है जो आप चाह कर भी नहीं कर पाते, बस करनी पड़ती है जो भी हो जाए। ज़िंदगी जो है वो प्लेट में रख के नहीं मिलती, बल्कि उसको खुद से जाना पड़ता है। जब हम किसी शादी में जाते हैं, किसी भी फंक्शन में जाते हैं, तो एक खाली प्लेट हमें मिलती है और हम उस प्लेट की मानी दी है मेरे ख्याल में, उस खाली प्लेट की तरह उसको सजाना, उसको उसमें खाना भरना वो हमारे जिम्मे आता है। और मेरे ख्याल में उस चीज़ को देखा जाए और ज़िंदगी को देखा जाए, तो ज़िंदगी भी जो है वो प्लेट में रख के नहीं मिलती भाई, उसको खुद ही लेकर चलना पड़ता है आगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप किसी की खुशी की वजह बन रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और बननी दूसरों की खुशी की वजह बनना भी चाहिए। अगर आप अब बहुत से लोग होते हैं जो अपने लिए जो है वो दूसरे को छोड़ देते हैं कि नहीं यार मैं नहीं खुश, लेकिन बहुत से लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो इस वजह से एक इंसान को छोड़ देते हैं कि यार मेरी वजह से उसको मतलब ये ना हो कोई ज़्यादा बात आगे बढ़ जाए और फिर जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल बात हो जाए। बट कोई बात नहीं, आपने हौसला करना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि ज़िंदगी में जो है वो आसानियाँ नहीं होती, ज़िंदगी को आसान बनाना पड़ता है, और ज़िंदगी आसान बनती भी नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि जो परेशानियाँ जो टेंशनें ज़िंदगी में होती हैं उनको लेकर ही चलना पड़ता है। एक टाइम आता है जब इंसान थक जाता है, लेकिन जब तक आप उसको लेकर चल सकते हैं उसको लेकर चलें। थकने वाले थक भी जाते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं थकते, और मेरे ख्याल में मैं भी शायद उन्हीं लोगों में से हूँ कि मेरी अगर किसी के साथ अटैचमेंट हो गई है तो मैं दोबारा उस इंसान को नहीं छोड़ पाती, जो मर्जी हो जाए। मतलब अगर आप उसके साथ बात करना छोड़ भी देंगे ना, तभी आप उससे दूर नहीं हट पाएंगे, क्योंकि बातें जो है वो ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी रिलेशन में, किसी रिश्ते में, अब रिलेशन ही थोड़ी ना हर चीज़ होती है, दोस्ती भी होती है, बहुत से ऐसे रिश्ते होते हैं। लेकिन बताने का मकसद यह है कि जब हम एक चीज़ के साथ अटैच हो जाते हैं तो फिर दोबारा उससे दूर होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक छोटा बच्चा जब अपनी माँ के साथ अटैच हो जाता है तो अपनी माँ के बगैर वो रहता भी नहीं है, और हम इंसान जो हैं वो मोहब्बत में ऐसे हो जाते हैं कि उस मासूम बच्चे की तरह रोते हैं जो सारी रात रोता रहता है लेकिन ये नहीं बता पाता कि उसको दर्द कहाँ पे है। सो हर इंसान की सिचुएशन को समझें, उसको जो है बताएं, समझाएं कि यार ये बात है। अगर आपके समझाने पे भी वो इंसान नहीं समझ पा रहा तो मेरे ख्याल में फिर आपको हट जाना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी की गलतियों समेत जो है उसको कबूल करते हैं, मे भी शायद हो सकता है कि वो इंसान ठीक हो जाए। क्योंकि जब हम एक ऐसे माहौल में उठते बैठते हैं जहाँ पर हमें लगे कि हम जैसे ही लोग बहुत सारे, मतलब हम अच्छे हैं, अपने आप को हम अच्छा ही बताते हैं, कोई भी इंसान खुद को बुरा नहीं कहता, सब कहते हैं मैं अच्छा हूँ, लेकिन किसी ना किसी कहानी में इंसान बुरा होता है। बट मेरे ख्याल में मैं कहती हूँ कि मैं जिस तरह की हूँ, मुझे किसी की कहानी में बुरा बनना नहीं चाहिए। वही कहती हूँ कि इंसान के साथ जुड़े रिश्तों को कबूल करें, उनको दुआओं में याद रखें, बल्कि उनके साथ जुड़े रिश्तों के लिए भी दुआ करें। और ऐसी छोटी मोटी बातों पर अगर हम सबको ही छोड़ देंगे तो यार ज़िंदगी में क्या ही बच जाएगा, मतलब आप अकेले तन्हा रह के मर जाएंगे। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, अच्छे और मुश्किल दिन जो है वो दोनों आते रहते हैं। सो आपको इन दोनों को लेकर कैसे चलना है ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर ख्वाहिश जो है वो फौरी तौर पे पूरी नहीं हो पाती, बहुत सी ख्वाहिशें जो है वो छोड़नी पड़ती हैं, बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर आपको लगता है कि यार इस चीज़ को जो है मैं नहीं लेकर चल पाऊँगी, बट आप उसको लेकर चल पाते हैं, चल देते हैं। और उसके लिए उस एक इंसान का साथ ही बहुत होता है जो जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा अटैच हैं। सवल बात को कंटिन्यू करेंगे, बोल बोल के मेरा भी गला खुश हो जाता है, पर प्रोग्राम में एक छोटे से ट्रैक को शामिल करेंगे अपनी फरमाइश पे। बस उसको ढूंढने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत महसूस होगी, लेकिन हम उसको ज़रूर ढूंढेंगे। अभी तक के लिए इस छोटे से बैकग्राउंड म्यूजिक को सुनिएगा, इसके उस पार बल्कि नहीं, प्रोग्राम में ट्रैक शामिल करेंगे, फिर उसके उस पार रहेगी आपसे मुलाकात।

सुबह अभी जो मैं ट्रैक शामिल कर चुकी हूँ ना, मतलब बहुत मज़े का ट्रैक है ये, और इसकी वीडियो भी बहुत मज़े की है। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि ये ट्रैक मैंने आप लोगों के लिए प्ले किया, ये मैंने अपने लिए प्ले किया, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं वो कोई कोई ट्रैक जो मैं अपने लिए भी प्ले कर सकती, जब तक आप मुझे कोई ट्रैक डेडिकेट नहीं करेंगे। सो मेरी भी ख्वाहिश रहती है कि मैं ट्रैक प्ले करूँ प्रोग्राम में अपने लिए। सो वेल, दो दो म्यूज़िक चल रहे हैं, आपने मुझे बताया ही नहीं यार। सो आइए सुनते हैं इस ट्रैक को, मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार। सेंटी नहीं होना, ट्रैक थोड़ा सा जो है वो ऐसा ही है, बट आपने उदास बिल्कुल भी नहीं होना। इस ट्रैक को सुनते हैं, नहीं इस ट्रैक को नहीं सुनते, मेरा दिल नहीं मान रहा इस ट्रैक को सुनने का, पता नहीं क्यों अजीब अजीब लग रहा है। बट हम इसके अलावा एक बड़े प्यार सा ट्रैक है, और ये मुझे पता है कि ये ट्रैक जो मैं शामिल करने जा रही हूँ ना, ये सिर्फ मेरी पसंद का नहीं है, ये उन लोगों की पसंद का भी है जो मुझे पसंद है। सो आइए सुनते हैं इस ट्रैक को, मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार। सो डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा मेरे साथ साथ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी, वाइब भी।

सुबह प्रोग्राम में जो है वो ट्रैक शामिल किए गए, बट थोड़ा सा सिस्टम में कोई इशू आ रहा है जिसकी वजह से मैं आपका साथ उस तरह से नहीं दे पा रही, बट साथ दूंगी आपका ज़रूर। प्रोग्राम में जो है गपशप को हम स्टार्ट करेंगे, बट अभी के लिए प्रोग्राम की छोटी फरमाइश हमारे पास मौजूद है, उसको ढूंढने में मुझे थोड़ा सा मसला हो रहा है। सो आइए उस ट्रैक को ढूंढ लेते हैं, तब तक इस बैकग्राउंड म्यूज़िक को आप इंजॉय कीजिएगा।

वो भी अचानक मेरे सामने ना एक ट्रैक आ गया, और मैं पुरानी मूवी का कुछ कुछ होता मूवी है मेरे ख्याल से, उस मूवी का ट्रैक है, और उस पर पूछा गया था कि बात कर रहे थे ना हम रिश्ते के बारे में, प्यार के बारे में उस दिन, तो मैं इसी को देख के मुझे एक बात याद आ गई कि प्रिंसिपल ने पूछा था राहुल से कि प्यार क्या है, तो राहुल ने बताया था कि प्यार दोस्ती है।

सो वाकई में अगर इस चीज़ को देखा जाए तो प्यार क्या है, प्यार क्या आपकी नज़र में प्यार क्या है? प्यार दोस्ती है। वो कहता है कि अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उसे कभी प्यार कर ही नहीं सकता।

0: जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। सो सॉरी सिस्टम में थोड़ा सा इशू चल रहा है, जिसकी वजह से आपके और अपने दरमियान जो मैंने ट्रैक शामिल किए हुए हैं, बट मैंने सोचा क्यों ना आपको अपनी आवाज़ भी पहुंचा दी जाए, ताकि आपको ये ना लगे कि सुरराज पता नहीं कहाँ चलेंगे। सो घबराने की कोई बात नहीं, अभी मैं कहीं नहीं जा रही, क्योंकि मेरे आपके दरमियान जो वक्त है वो हमारा साथ होगा ठीक 2 बजे तक। प्रोग्राम में एक बड़ी खूबसूरत सी बात जो है शामिल करवाई गई है, और बात अच्छा मतलब अगर एक चीज़ को देखा जाए ना, जिस तरह की हमारी सिचुएशन होती है उसी तरह के जो है ना, एक तो फ़ोन पे रील्स आना शुरू हो जाते हैं, और दूसरा ये कि मैसेजेस भी वो उसी तरह के आने लगते हैं, ट्रैक्स की फरमाइश भी उसी तरह की आने लग जाती है, जिस तरह का मूड अप होता है। पर पता नहीं ऐसा क्यों होता है, अब फ़ोन जो है हमारी बातें सुनता है, तो उसका चलो मैं मान लेती हूँ कि उस तरह की रील्स जो है वो आती रहती है जिस तरह का आपका मूड है, बट ट्रैक की फरमाइश भी उसी तरह की, तो ये थोड़ा सा मुझे ना कंफ्यूज कर देता है।
1: अब जो तू आया, एक बात कहूं तुझसे।
0: सुबह प्रोग्राम में बोला गया है, बात शामिल करवाया गया है, बड़ी ही प्यारी बात है, नाम लेने से मना किया गया और जगह का नाम भी लेने से मना किया कि मैं कहीं से भी नहीं सुन रही, आप सिर्फ इस बात को शामिल कर दीजिए और इसकी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचाइए। बात यह है कि ज़िंदगी उसी चीज़ के लिए हमें क्यों रुलाती है जो हमें बहुत ज़्यादा अजीज़ होती है। इट्स मीन के मैंने प्रोग्राम में जो है वो टॉपिक शामिल किया था ज़िंदगी के हवाले से, ज़िंदगी के रिलेटेड, सो उसी के रिलेटेड एक सवाल भी मुझ तक पहुँचा है कि ज़िंदगी हमें उन्हीं चीज़ों के लिए क्यों रुलाती है जो हमें बहुत अजीज़ होती हैं। आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है, किस्मत का खेल समझ लें या नसीब की बात, नसीब का देख, नसीब अपने नसीब की बात कर लें, तो फिर वही बात आ गई कि मैं आगे बोल रही थी कि किसी इंसान को पाने के लिए, किसी भी चीज़ को पाने के लिए नसीब जो है वो सबसे पहले जो है वो डिपेंड करता है आपका नसीब कैसा है। नसीब में होगा तो मिल जाएगी, ना हुआ तो हाथ में आके भी चली जाएगी। बट हर रिश्ते को एडजस्ट करना वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको लेकर कैसे चलते हैं। छोड़ देना मसले का हल नहीं होता यार, मैं कितनी दफ़ा इस बात को बोल चुकी हूँ कि छोड़ देना मसले का हल नहीं होता, मसले को फेस करना, उस इंसान को फेस करना जिसके साथ आप काफ़ी ज़्यादा अटैच हो गए, और छीना नहीं जाता, होता कुछ भी नहीं, बस बातचीत कम हो जाती है, लेकिन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने किसी इंसान के साथ वादा किया कि यार मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, या मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये वो मतलब इस तरह की बातें आजकल चलती रहती हैं, सो इतनी छोटी बात पर, मतलब किसी भी बात पर जो है ना, किसी भी छोटी बात पर उस इंसान को मत छोड़ें। सेकंड ऑप्शन बुरा होता है, ज़ाहिर सी बात है, बट किसी ज़िंदगी में सेकंड ऑप्शन होना भी बड़ी बात होती है, ख़ास तौर पे उस इंसान की ज़िंदगी में जो पहले से ही जो है मैरिड हो, पहले से ही कहीं कमिटमेंट की हो उसने, बट फिर भी आपकी मतलब आप उसकी ज़िंदगी में सेकंड ऑप्शन है, तो मेरे ख्याल में कोई बुरी बात नहीं है, सेकंड ऑप्शन होना भी बहुत बड़ी बात होती है।
1: जुड़ी रहे तुझसे हर एक
0: तो जिस तरह मैंने अभी एक प्रोग्राम में जो है वो बात शामिल करवाई थी, और मेरे ख्याल में बात हम उससे पहले कर रहे थे, वो कहते हैं ना कि आई नो आई एम नॉट योर पहला प्यार, बट आई वांट टू बी योर आखिरी प्यार। सो आखिरी प्यार बने, मैं हमेशा कहती हूँ कि पहला प्यार, दूसरा प्यार इंसान की ज़िंदगी में आता है, लेकिन किसी इंसान की ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ बनना चाहते हैं तो आखिरी प्यार बने, जिसके बाद उसको किसी कभी भी किसी से मोहब्बत ना हो। सुबह उसी के साथ साथ हम बात कर रहे थे दोस्ती की, प्यार की, कि प्यार क्या है। सो बात ये कर रहे थे कि प्यार, मतलब राहुल ने बोला था कि भाई प्यार दोस्ती है, अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं कभी उससे प्यार कर ही नहीं सकता। मतलब क्या यार, इस बात में इतना मतलब वो जोर है किस्म का कि यार बस प्यार दोस्ती है, प्यार का मतलब ही दोस्ती है। ज़रूरी नहीं है यार रिश्ते का, जब आप किसी सा रिलेशन में आते हैं तो वो कोई गलत ही हो, मतलब बहुत से रिश्ते होते हैं यार दोस्ती के होते हैं, इंसानियत के होते हैं, और इससे बड़ा कोई रिश्ता, मेरे ख्याल से दोस्ती से बड़ा कोई रिश्ता आपकी ज़िंदगी में नहीं हो सकता।
1: तुम पास आए।
0: अगर वो इंसान जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अजीज़ है लेकिन वो आपको मिल नहीं पा रहा, तो आप उसके साथ दोस्ती की तरह दोस्त बन के भी रह सकते हैं, आपके उसके दरमियान दोस्ती हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती यार।
2: न जाने।

0: जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशा मदद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 FM के लाइव स्टूडियो से।
1: किसी शाम की तरह तेरा रंग है खिला, मैं रात एक तरह।
0: सवाल उसी के साथ साथ प्रोग्राम एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक हाल हो जाती, कमर्शियल ब्रेक इस पर ही आपसे मुलाकात वक्त हुआ जाता है मेरे आपके दरमियान हमारे एक सेगमेंट का, यानी कि मैंने अपना लास्ट सेगमेंट रखा होता है म्यूजिक का, तो मैं ज्यादातर उसमें जो है ना म्यूजिक ही प्ले करती हूँ।

ज़िंदगी ही बात करें तो ज़िंदगी एक सफ़र है जिसमें खुशियाँ, गम, कामयाबी और नाकामी सब शामिल हैं। अगरचे ये सफ़र हमेशा आसान नहीं होता,

लेकिन हर मुश्किल इंसान को कुछ ना कुछ सिखाती है। जो लोग सब्र, मोहब्बत, मेहनत, सोच समझ के काम को लेकर आगे बढ़ते हैं, वो मुश्किलात को अपनी तरक्की का ज़रिया ही बना लेते हैं। सो ज़िंदगी में छोटी मोटी मुश्किलें आती रहती हैं, उसको लेकर कैसे चलना है ये आप पे डिपेंड करता है। सो परेशानियों को ये मत समझे कि वो क्यों आई हैं, और ये समझे कि वो आपको आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ समझाने आई हैं। ज़िंदगी क्योंकि आसान नहीं होती, बहुत ही ऐसी चीज़ों को हंस के खोना पड़ता है जो आपको बहुत अजीज़ हो। और पता नहीं, मैं जब बात करूँ तो फिर रोना भी आ जाता है, ज़्यादा पता नहीं क्यों रोना क्यों आ जाता है, दिल शायद छोटा है इस वजह से रोना आ जाता है। खैर, प्रोग्राम में जो है वो ट्रैक को शामिल करते हैं। एक प्यारे से ट्रैक की फरमाइश हमारे पास मौजूद है, सो आइए हम उसको शामिल कर देते हैं प्रोग्राम में। सो डोंट गो एनीवे, रहिएगा हमारे साथ साथ।

0: जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को। रेडियो 97.1 FM के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज, और आवाज आप सुन रहे हैं सरुराज की। सुबह गपशप का सिलसिला आपसे जारी रहेगा। प्रोग्राम में मजे मजे के ट्रैक भी शामिल किए जाएंगे। मुझे पूछा गया कि भाई सरुराज आपका नाम है, लेकिन आपका असल वाला नाम क्या है? वो तो मैं नहीं बताने वाली आपको।
1: तेरे आने से जिंदगी बहार है, तेरे जाने से
0: कुछ बातें जो है ना छुपी हुई अच्छी लगती हैं, और कुछ रिश्ते कुछ लोग उनको छुपा के ही रखना पड़ता है, और छुपी चीज़ें कामयाब भी हो जाती हैं। मैंने सुना है, तजर्बा नहीं है इस चीज़ का।
1: अब आजा के जिंदगी जवां है तू।
0: सुबह मैंने सोचा कि अब आपकी फरमाइशें तो पूरी हो ही रही हैं, सो क्यों ना मैं अपनी भी एक फरमाइश को पूरा कर देती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरी तो कोई फरमाइश पूरी करने वाला है नहीं, सो मुझे खुद ही अपनी फरमाइश पूरी करनी पड़ेगी।
1: कुछ नहीं जानता।
0: ऐसे सोचने वाली बात है, कोई तो इंसान यार होगा जो मेरी फरमाइश को पूरा करेगा। आई डोंट नो होगा भी या नहीं, बट मे बी शायद हो, बट कहाँ है आई डोंट नो, कहाँ है मुझे भी नहीं पता। मसरूफ़ होंगे जाहिर सी बात है, और कहाँ होना उन्होंने बट मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है। सुबह आइए प्रोग्राम में इस ट्रैक को शामिल करते हैं। अभी मेरे ख्याल से रिसेंटली ये ड्रामा जो है ना वो ख़त्म हुआ है। बहुत मज़े का ड्रामा था, स्टोरी भी बड़े मज़े की थी इस ड्रामे की, इस ड्रामे का ट्रैक भी बहुत मज़े का है। सवाल आइए सुनते हैं इस ट्रैक को, मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार, सो डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा सरुराज के साथ साथ।

0: जी हाँ, तो वन सेकेंड वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजल 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। सवल प्रोग्राम में ट्रैक शामिल किया था, उसके बाद रही आपसे मुलाकात। तो जिंदगी के हवाले से बात कर रहे थे, तो बड़ी ही प्यारी बात एकदम से दिमाग में है कि जब जिन लोगों को चुन लिया जाए तो फिर उनमें नुक्स नहीं निकाले जाते। जब जिंदगी के आंगन में कोई पौधा लगा दे तो फिर ये नहीं कहते कि यार उसकी शाख टेढ़ी है, ये नहीं कहते कि उसके पत्ते कम है, बल्कि उसे तवज्जो का पानी दें, मोहब्बत की रोशनी दें, उसकी परवरिश करें। चुन लेने के बाद माजी की किताब नहीं खोली जाती, बल्कि उस इंसान की तमाम तर खूबियों खामियों समेत उसे कबूल किया जाता है। सफर का इरादा बांध दिया जाए तो हम कदम भी रहना पड़ता है, क्योंकि हम सफर ही होता है।
1: तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ।
0: सड़क पर चलता हुआ कोई अजनबी नहीं, हर गलती पर अगर माजी की अदालत लगा ली जाए तो रिश्ते मोहब्बत से नहीं बल्कि मुकदमों में चलते हैं। याद रखें कि किसी भी हाल में कबूलियत जो है ना, वो सबसे खूबसूरत शक्ल है।
1: मुझे प्यार हुआ था इकरार।
0: और जब कबूल कर लिया जाए तो नुक्स नहीं निकाले जाते। इस बात को जो है वो दिमाग से बांध के रख लें, बल्कि उस इंसान के जख्मों पे मरहम रखे जाते हैं। जैसे तहजीब हाफी का पता है शेर भी है कि मुझसे मत पूछो कि उस शख्स में क्या अच्छा है, मुझसे मत पूछो कि उस शख्स में क्या अच्छा है, अच्छे अच्छों से मुझे मेरा बुरा अच्छा है।
1: देखो यहाँ तेरी आँखों में बसता है मेरा जहाँ, कभी
0: अपने अपने हौसले अपनी तलब की बात है। चुन लिया मैंने तुम्हें सारा जहाँ रहने दिया, मतलब अगर इन लाइनों को देखा जाए तो यार मैं कहती हूँ कि एंड हो गया। मतलब जिनको चुन लिया जाए फिर उनको आधे रास्ते में नहीं छोड़ा जाता, उनके साथ चला जाता है कदम से कदम मिला के।
1: कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार।
0: सो इस चीज को समझने में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन समझ आएंगे आहिस्ता आहिस्ता, हर चीज़ इंसान समझ ही जाता है। सो वेल, प्रोग्राम में एक छोटे से ट्रैक को शामिल करेंगे, इस ट्रैक के उस पार फिर चाहेंगे आपसे इजाज़त। दुखी वाला माहौल बनाना नहीं था, लेकिन बन जाता तो फिर समझ नहीं आती। सो वेल, आइए सुनते हैं इस ट्रैक को, मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार, मिलेंगे तो चाहेंगे आपसे इजाज़त। अभी तक के लिए कहीं नहीं जाना, जुड़े रहना है फजा के साथ विद सलू राज।

जी हाँ, तो वन सेकेंड वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लास्ट स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं जी लंच बॉक्स लाउंज, आवाज़ आप सुन रहे हैं सुरराज की सफल। प्रोग्राम में वक्त हुआ जाता है अब ख़त्म। सो मेरे ख्याल में अब आपको मुझे देनी होगी इजाज़त। मिलेंगे कल नहीं तो परसों, क्योंकि कल जो है एक नए आरजे आपके साथ जो है हम प्रोग्राम में आएंगे और उनको उम्मीद करूँगी कि आपको उनका प्रोग्राम भी पसंद आएगा। सुबह कल नहीं तो परसों रहेगी आपसे मुलाकात। सो अभी तक के लिए इस ट्रैक को सुनिएगा, इस ट्रैक को सुन के जाइएगा कल तक के लिए, के परसों तक के लिए। मेरा और आपका अल्लाह निगेबान, अल्लाह हाफिज़।

0: ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕਾਲੀ
1: ਠਹਿਰੀਏ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਕਮਰਸ਼ਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।

मैं हूं आपका मेजबान हुज़ैफ़ा हैदर। दोपहर के 2 बज चुके हैं और अब वक्त है अपनी थकन को दूर करने का। अगर आप दफ्तर में हैं, सफर में हैं या घर पर हैं तो तैयार हो जाएं जबरदस्त मौसीकी और दिलचस्प गुफ्तगू के लिए। नॉटिंघम में इस वक्त मौसम खुशगवार है, हल्के बादल हैं और दर्जा हरारत तकरीबन 18 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है। मौसम मजे का है तो मूड भी मजे का हो जाना चाहिए। और अब बगैर वक्त ज़ाय किए सुनते हैं एक जबरदस्त फास्ट ट्रैक सिर्फ रेडियो फजा 97.1 FM पर।

तूने वैसे भी जाना है ना कि यार वैसे रूम का खर्चा उन्होंने करना ही ना, मसला हमारा तो नहीं है ना, अरे मैनेज कर दे बाकी वो जाने उनके काम में। कुछ कर रहे, मुझे बता, मुझे बता।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं, चाहे लंच फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं। When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
8: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
7: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
8: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
7: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
9: You are listening 97.1 FM.
10: You are staying. We are... Fazan 97.1 FM.
11: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
12: 97.1 FM.
9: You are listening 97.1 FM.

Turn It Up, Radio Faza 97.1 FM.

वेलकम बैक सामीन रेडियो फजा, आप सुन रहे हैं एफएम 97.1 एफएम। दोस्तों याद रखें, कामयाब लोग हमेशा मौका का इंतजार नहीं करते बल्कि मौके पैदा करते हैं। तो आज के दिन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ किया जा सकता है।

0: अपने ट्रैक सुना, आपको कैसा लगा? अपनी राय का इजहार कीजिएगा अपने नाम के साथ, तो अपने शहर के नाम के साथ कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए।
1: Ready to move.
2: It's all about the beats.
3: Wow, FM.
4: Only tune Super Hit Channel.
5: Fizz on 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि ओ हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: Planning a wedding, reception, or special celebration? Discover Excelsior Nawab, Nottingham's brand new renovated banqueting venue. A beautifully designed indoor marquee concept featuring sparkling traditional chandeliers, stunning LED lighting throughout, and elegant decor.
2: Enjoy venue hire, tables and chairs with table linen, chair covers, centerpieces, stage and walkway decor, a delicious three-course meal, drinks, professional waiter service, and a dedicated supervisor on the day.
1: Fully air-conditioned, with modern kitchen facilities, a spacious foyer reception area, located just 1 mile from Nottingham City Center at 5-7 Lourdes Road, NG51EL.
2: Excelsior Nawab. Where your special moments become unforgettable.
3: This is a public service announcement.
4: The station.
5: That plays
6: foot tapping music.
7: Hazza 97.1 FM.
8: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

फजा 97 के सुनने वाले और चाहने वाले कहीं मत जाइएगा। आतिफ असलम के सॉन्ग्स की हम प्लेलिस्ट प्ले कर रहे हैं, सुनते रहिए आतिफ असलम को।

0: This is a public service announcement.
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू लव।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
10: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
11: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
10: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
11: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
10: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
11: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
10: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
11: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
10: टेस्ट भी वाइब भी।
12: You are listening 97.1 FM.

ऑल रेडी नाउ वंस अगेन वेलकम बैक टू ग्रा चुके हैं वापस से सुमित के साथ कि आप लोग मेरे साथ साथ हैं। अभी अभी आपने ऑनर बेस अब्यूज़ के मुतालिक एक प्रोग्राम सुना, उम्मीद है कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम को अंडरस्टूड करेंगे। वेल मुझे कहते हैं उस्मान खान और आप सुन रहे हैं 97.1 FM नॉटिंघम के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम ड्राइव टाइम। और अब वक्त हुआ जाता है थोड़े से म्यूज़िक की जानिब निकलने का, क्योंकि काफ़ी टाइम से आपने कोई म्यूज़िक नहीं सुना, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप यकीनन मेरे प्रोग्राम में बोर हो जाएं। इसलिए मैं आपके लिए खूबसूरत सा ट्रैक शामिल करने वाला हूं। उम्मीद है कि इस ट्रैक के उस पार जब हम लौट कर वापस आएंगे तो आप प्रोग्राम में शामिल हो चुके होंगे। मैं कहाँ गया वो, अभी तो मैंने आपके लिए इतना खूबसूरत सा एक ट्रैक निकाल के रखा था, लेकिन मुझे लगता है कि वो कहीं आगे पीछे ऊपर नीचे हो गया है। कोई बात नहीं, हम आपके लिए कोई और खूबसूरत सा ट्रैक शामिल कर लेंगे। लेकिन मैं आपको इससे पहले ये बता दूं कि आपने प्रोग्राम में शामिल किस तरह होना है। जल्दी से मोबाइल फ़ोन उठाइए और उसका डायल पैड ओपन कीजिए। मैं आपको नंबर बताता हूं, उस नंबर को नोट करिएगा और फिर उसको सेव करिएगा। द नंबर इज़ 0115-7100971। आई अगेन रिपीट दिस नंबर इज़ वेरी स्लोली 0115-7100971। सो ये खूबसूरत सा नंबर है, इस नंबर को नोट करने के बाद आपने सेव करना है, और सेव करने के बाद आपने उस जाना है व्हाट्सएप पर जाकर कोई भी पसंदीदा खूबसूरत सा जो भी आप सुनना चाहें कलाम, उसका नाम लिखिएगा। और उसके बाद आप मुझे अपना नाम भी ज़रूर लिखिएगा, अपने इलाके का नाम लिखिएगा और उसको सेंड कर दीजिएगा इस नंबर पर। हवा के दोष पर लहराता हुआ आपका खूबसूरत सा पैगाम जैसे मेरे काका कंप्यूटर की स्क्रीन पर जगमगाएगा, सुनती हुई तमाम तर खूबसूरत सी सवातों की नजर हो जाएगा। फिलहाल शामिल कह रहा हूँ जी अबरारुल हक की खूबसूरत सी आवाज़, तेरी गल गिरनी। थोड़ा सा ओल्डी गोल्डी गाना है लेकिन आज भी काफ़ी दिलों की धड़कन है, तो उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा ऐसा तेरी गल गिरनी। गल गिरनी है डैडी नाल। मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार, रहिएगा मेरे साथ। आई एम योर होस्ट उस्मान खान।

जी हाँ जनाब, आपने इब्राहिम हक की खूबसूरत सी आवाज़ सुनी, उम्मीद है कि आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छा, इब्राहिम हक की आवाज़ सुनने के बाद मुझे याद आया कि इब्राहिम हक का एक लेटेस्ट ट्रैक भी आया है, वो पता नहीं आपने अभी तक सुना है या नहीं सुना, क्योंकि 4 दिन पहले अभी सिर्फ वो उन्होंने उससे पब्लिश किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा अगर आपने सुना है। अगर नहीं सुना तो मैं अपने लिसनर्स को ज़रूर सुनाऊंगा। हुस्ना दी सरकार ऑफिशियल वीडियो है जनाब, वीडियो खैर आप तो नहीं देख सकते ना, वो तो मैं देखूंगा, आप खाली ऑडियो सुनिएगा। और अगर आपको पसंद आया तो आप ज़रूर सर्च कीजिएगा। अगर आपके किसी चाहने वाले को डेडिकेट करवाना चाहते हैं तो मुझे नाम बता दीजिएगा, मैं उनके आपकी तरफ से उनको डेडिकेट कर दूंगा। लेकिन फिलहाल ये खूबसूरत सी आवाज़ इब्राहिम हक की सुनिए। डॉक्टर जीजू भी हैं और साथ में ज्यूज और रोचा किला भी हैं और साथ में ब्रारुल हक भी हैं। क्या कमाल की आवाजें हैं तीनों। आइए मिलकर सुनते हैं, लूट कर वापिस आते हैं। इसके उस पार मैं बीच में बिल्कुल दखलंदाजी नहीं करूंगा।

और जनाब उम्मीद है कि आपने इस खूबसूरत से ट्रैक को जरूर इंजॉय किया होगा। इस ट्रैक के उस पार आपका मेजबान उस्मान खान आ चुके हैं वापस लौट कर आपकी खिदमत में हाजिर। इस उम्मीद के साथ आप लोग मेरे साथ साथ हैं, मेरे साथ साथ रहने वाले हैं। अव्वल प्रोग्राम में शामिल होने के लिए 11571007971 पे आपने करना है व्हाट्सएप पर मैसेज, और मुझे बताना है कि आप मेरे साथ हैं। न सिर्फ आपने मैसेज करना है बल्कि आप चाहें तो व्हाट्सएप पर कॉल भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें अलाउ हैं। और फिर मेरा प्रोग्राम हो और उसमें ये चीज़ें ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ, लेकिन शर्त ये है कि प्रोग्राम में शामिल होना पड़ेगा, और प्रोग्राम में शामिल होने का तरीकाकार भी तो वही है ना जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा, खैर, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप कुछ फरमाइशी करें, आप वैसे भी शामिल हो सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि आप फलां इब्ने फलां फलां जगह से मुझे सुन रहे हैं। मैंने सोचा कि थोड़ा सा ये झलकते फड़कते ट्रैक से बाहर निकल के ना कोई रोमांटिक सा ट्रैक भी आपको सुनाना चाहिए। सो एक बड़ी खूबसूरत सा रोमांटिक सा ट्रैक आपके लिए है। धुरंधर मूवी से लिया गया ये ट्रैक, और रणवीर सिंह इसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक्टिंग करते हैं, सारा इनके साथ हैं, और अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये ट्रैक है। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। ये उजाले तेरे तू अगर, सो आइए मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार ही मेरे साथ ये खूबसूरत सा रोमांटिक सा ट्रैक आपके पार्टनर के लिए आपकी तरफ से। मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।

वेलकम बैक आ चुके हैं लूट के वापस से सुमित के साथ। मेरे साथ साथ एक छोटी सी प्यारी सी चुनमुन से मशहूर ब्रेक आपने एंजॉय की। इसको मजीद अच्छे तरीके से गुजारने के लिए जरूरी है कि आपका प्रोग्राम में शामिल होना और प्रोग्राम में शामिल होने का तरीका कर पुराना है लेकिन वही है जो आपको असबर है यानी कि आपको याद है। जिन लोगों को नहीं पता, जिन लोगों ने आज पहली बार 97.1 FM या डैप पर हमें ट्यून किया है, आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तरीकाकार बहुत ही आसान सा है। जल्दी से अपने मोबाइल फोन का डायल पैड ओपन कीजिए और नंबर नोट करें। नंबर नोट करने के बाद उसको सेव कीजिएगा। बाकी कहानी आगे चल के बताते हैं। द नंबर इज 0115710097। आई अगेन रिपीट दिस नंबर इज वेरी स्लोली स्लोली 0115710097। अच्छा, कभी कभार मुझे नंबर अपना ही अनाउंस करते हुए ना वो एक बचपन की याद आ जाती है। एक एप्लीकेशन हुआ करती थी टेलीफोन के नाम से, एक एप्लीकेशन आती थी 09007861। अरे वाह, देखें बचपन से बुढ़ापे तक पहुंच चुके हैं लेकिन आज भी वो नंबर हमें ज़बानी याद है। सो मेरी एज के जितने भी लोग हैं उन सबको भी ये नंबर ज़बानी ज़रूर याद होगा। खैर, बात कहाँ से कहाँ निकल गई है। अब बात कर रहे थे जनाब कि आप इस नंबर को नोट करें, इसको सेव करें और फिर व्हाट्सएप पर जाकर कोई भी अपना पसंदीदा कलाम, कोई

ना आए तो अपना समझ के इग्नोर कर दीजिएगा, इसके अलावा आप कुछ कर भी नहीं सकते। खैर जनाब, अगर तो आप तक हमारी ट्रांसमिशन ठीक से नहीं पहुंच पा रही तो आपके लिए सेकंड ऑप्शन एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन है। जी हाँ, या फिर आप चाहें कि आप अपने किसी प्यारे को बताएं कि फलां जगह पे, फलां रेडियो पे आपके लिए मैंने गाना लगवाया है, जल्दी से ट्यून करके सुनें। और अगर आपको लगता है कि उन तक ट्रांसमिशन नहीं पहुंच पाएगी, यानी कि नॉटिंघम के इर्द गिर्द कहीं दूर रहते हैं, तो उनके लिए तरीकाकार ये है कि गूगली पर जाइएगा और गूगली पर जाकर सर्च करें radiofaza.co.uk, आने वाली पहली वेबसाइट पर क्लिक कीजिएगा और मुझे लाइव सुन लीजिएगा। इसके अलावा हमारे तमाम तरह आरजेस की तमाम तरह इन्फॉर्मेशन भी आपको वहां से मिल जाएगी, कौन सा आरजे किस टाइम पे कौन सा प्रोग्राम करता है, किस जॉनर का प्रोग्राम करता है, तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं और आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस को प्रमोट करने में रेडियो फजा आपका साथ दे, तो हमारी इसी वेबसाइट पे एक प्यारा सा छोटा सा मैसेज छोड़ दीजिएगा, हमारी मार्केटिंग टीम आपसे खुद रابطہ कर लेगी। इसके अलावा आपके पास एंड्रॉयड है या फिर आईफोन है, दोनों के लिए सहूलत मौजूद है। एप्पल प्ले स्टोर या फिर एप्पल प्ले स्टोर तो खैर होता ही नहीं है, वो तो एंड्रॉयड का होता है ना, एप्पल का तो क्या कहते हैं यार उसको, ये आप मुझे बताएंगे उसको क्या कहते हैं। खैर वहां पे आपने जाकर सर्च करना है एप्लीकेशन को रेडियो फजा 97.1 FM के नाम से, तो यकीनन प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर पर आपको हमारी ये एप्लीकेशन मिल जाएगी। ओह मैं दस दीता था वनू, अच्छा चले कोई बात नहीं। खैर सो हमारी एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी, दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी जगह बआसानी आप हमें ट्यून करके सुन सकते हैं, बशर्ते इंटरनेट आपके पास मौजूद हो। और अगर आप ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं तो फिर ड्राइव के दौरान आप फजा डैप पर मुझे ट्यून कर सकते हैं, और डैप पर आपको मजीद क्रिस्टल एंड क्लियर वॉइस सुनने को मिलेगी। ये तमाम तर वो रास्ते हैं जो मुझ तक पहुंचेंगे, और वो किसी ने कहा था ना कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, खैर किसी ने क्या कहा था, डॉन ने खुद ही कहा था। लेकिन मुझे पकड़ना बहुत ही आसान है। ये तमाम तर वो रास्ते हैं जिनके थ्रू आप मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, और जब आप मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे तो यकीन मेरे प्रोग्राम को चार चांद जरूर लग जाएंगे। लेटेस्ट ट्रैक, बड़ी खूबसूरत सी आवाज, आजकल के बहुत से अच्छा सुनने वालों की लिस्ट में ये गाना भी आ रहा है। अब मुझे समझ नहीं आती कि इस गाने में ऐसा क्या है। बहरहाल जो भी है जी, फरमाइश थी इसलिए पूरी करना मेरे लिए जरूरी है। इस खूबसूरत सी आवाज को सुनिए, इसके उस पार होगी आपसे फिर से मुलाकात। डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा मेरे साथ साथ। आई एम योर होस्ट उस्मान खान एंड यू लिसनिंग फजा 97.1 FM एंड आल्सो प्रोग्राम कॉल्ड ड्राइव टाइम।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are safe. We are
12: Fazan 97.1 FM.
13: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
14: 97.1 FM

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते सुहागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशन, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
2: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
7: द स्टेशन
8: दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
9: हजार 97.1 FM।

0: This is a public service announcement.
1: The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
6: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए। गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी। स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315066. मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
7: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
8: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
7: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
8: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
7: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
8: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
7: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
9: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
6: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
10: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
11: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
12: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटनिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715।
5: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: The station
2: that plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजा 97.1 FM पर।

0: Get ready to move.
1: It's all about the beats.
2: Wow FM.
3: Only Tune Super Hit Channel.
4: Fizz on 97.1 FM.
5: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
6: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
7: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
8: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
7: सलासा ट्यूशन सेंटर?
8: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
7: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
8: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
7: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
9: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
10: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
11: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
12: जबरदस्त हिट्स,
13: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर।
14: फजा 97.1 FM,
15: आई लव इट।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त लेने।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday.
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are listening. We are Fazan 97.1 FM.
12: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
13: 97.1 FM.
14: आपके दिल की धड़कन।
15: You're listening to Radio Faza 97.1 FM. Enjoy songs from legendary singer Kishore only in Dedication Hour.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशन, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: Planning a wedding, reception, or special celebration? Discover Excelsior Nawab, Nottingham's brand new renovated banqueting venue. A beautifully designed indoor marquee concept featuring sparkling traditional chandeliers, stunning LED lighting throughout, and elegant decor.
2: Enjoy venue hire, tables and chairs with table linen, chair covers, centerpieces, stage and walkway decor, a delicious three-course meal, drinks, professional waiter service, and a dedicated supervisor on the day.
1: Fully air-conditioned, with modern kitchen facilities, a spacious foyer reception area, located just 1 mile from Nottingham City Center at 5 to 7 Lourdes Road, NG51EL.
2: Excelsior Nawab. Where your special moments become unforgettable.
3: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमराह चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ, अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिले। मेरा नाम है रेडियो फजा।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: यू आर लिसनिंग टू 97.1 FM।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। राया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715।
8: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM।
6: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
7: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
8: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
7: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
8: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
7: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
8: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
7: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
9: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
7: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
10: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
11: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
11: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
11: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
12: When you are running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
11: Park Foods, जो नाम है मायार का।
13: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
14: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
14: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
14: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
14: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
14: टेस्ट भी, वाइब भी।
15: You are listening 97.1 FM.